हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात विविध भारती के कार्यक्रम वंदन वार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर

0: 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद को जानना ही इस जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है और यही ज्ञान सारी चिंताओं का एकमात्र समाधान है। और अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं झरोखा के अंतर्गत आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। इसका भाग 227 आज प्रसारित किया जाएगा। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। इसका भाग 5 आज प्रसारित होगा, जिसे आप पुनः शाम 6:45 पर सुन सकते हैं प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता अमरीश पुरी पर। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। रंग तरंगे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली दोपहर 3 बजे, 4 बजे आज शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, जिसमें डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का भाग 1 आज आप सुनेंगे, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। 5 बजे ये आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। संध्या रंजन का समय होता है शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म खिलौना के गीत। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार डाक का।

निर्देशन सत्येंद्र शरद का। कार्यक्रम आपके लिए 9 बजे, रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए, प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

मुनि याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्रीराम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संसार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में और संगीतकार जयदेव जी के कहने पर शास्त्रीय संगीत की ओर फिर मुड़े
2: जी।
1: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं
2: जी,
1: उनमें से कौन से मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
2: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए और कम आर्टिस्टों में गिने चुने, जैसे जोग साहब का जिक्र कर चुके हैं, जगजन राव जोशी जी का कर चुके हैं, डी के दातार और एन राजम जी और शिशिर कणादर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी, इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में एन राजम जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था और उनकी टेक्निक में पूरा साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूजिक की जितनी खूबियाँ हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक उन्होंने सीखा, और बाद में और एक महापुरुष की शिष्या हुई वो जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी दादरा गाते थे, उनके साथ मैंने भी बजाया महादेव मिश्रा साहब के पास। मैंने दो तीन लोगों की संगत की जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी, गजानन राव जोशी जी के साथ भी मैंने बजाया इंदौर में, एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के साथ। तो मेरा ये कहना कि कम बैक टू बनारस, तो बनारस के संगीत को एन राजम जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया और ग्रहण करके ठुमरी दादरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया।
1: एन राजम जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी,
2: प्रमुख थी,
1: और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में पहुंचे थे
2: जी।
1: तो कैसे थे वो दिन वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करती थी?
2: बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो
1: जी जी।
2: एन राजम जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी
1: जी,
2: कई सारे एम आर गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजम जी उन दिनों मैं, मुझे वायलिन तो उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं।
1: हाँ।
2: तो वो आती थी और मैं हर एक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहा है। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बड़ी दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब उनके घर में तो उनके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब,
1: हाँ,
2: वो भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, और अभी इनकी बेटियां और नातिन वगैरह सब

0: वायलिनिस्ट
1: वायलिन बजाते हैं।
0: हाँ, बजाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं राजम जी की, और इनका वायलिन वादन श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी। हम विदुषी एन राजम जी का बजाया राग यमन की एक झलक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: अच्छी बात है।

0: विदुषी एन राजम का बजाया राग यमन की ये झलक आपने सुनी श्रोताओं। पंडित जी, लगे हाथों राग यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह आरोह के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, राग यमन पहला राग है जो स्टूडेंट्स भी सीखते हैं
0: जी,
1: और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई था नहीं पाई उन्होंने, और स्टूडेंट्स को भी हम लोग शुरुआत राग
0: जो राग सिखाया जाए
1: राग से सिखाते हैं
0: जी।
1: तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा मा तीव्र लगता है, और पाधा निसा ये सब शुद्ध स्वर हैं, और वादी संवादी इसके जो हैं गंधार और निषाद हैं, ये दो सुर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा बजा के इसके आरोह अवरोह या इसका एक स्वरूप कोशिश करता हूँ, ठीक है।

0: हम लोग केवल आरोह अवरोह से राग का बहुत स्केलेटन मालूम पड़ता है
1: जी।
0: स्केलेटन में और एक शक्ल में पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं
1: जी।
0: हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग एमन की शक्ल है।

0: वाह पंडित जी, इस राग पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: कौन सा?
0: जिया ले गए जी मोरा सावरिया।
1: अरे बहुत अच्छा गीत है
0: जी, लता जी की आवाज है
1: बिल्कुल।
0: और ये राजा मेहदेली खां का लिखा गाना है, संगीतकार इसके हैं मदन मोहन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं।

0: राग यमन पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, लता जी की आवाज में संगीतकार मदन मोहन।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरी गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है शंकर जयकिशन के संगीत से। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम हलाकू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अभी ये गीत आपने सुना लाला रुख इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी का लिखा गीत था और खयाम का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अदल ए जहांगीर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। कमर जलाल आबादी का लिखा गीत था, हुस्न लाल भगत का संगीत। श्रोताओं, अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में एक बार फिर से स्वागत है। इस अंतराल के पहले आपने गीत सुना अदले जहांगीर फिल्म से, हुस्नलाल भगतराम के संगीत से सजा ये गीत था। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

0: सेन त्रिपाठी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का गीत शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आपने सुना। भरत व्यास ने इस गीत की रचना की थी एसएन त्रिपाठी की बनाई धुन पर।

ये आवाज थी गीता दत्त की। फिल्म फैशन से ये गीत था। भरत व्यास रचनाकार और गीतकार भरत व्यास और संगीतकार हेमंत कुमार थे।

भाभी फिल्म से ये गीत था। आशा भोसले ने आवाज इस गीत को दी। तन्वी नकवी की रचना थी और तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम आकाशमणि के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त सचिन के तरफ से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से।

हमारे विचार ही सब कुछ है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। महात्मा गांधी। सुविचार के उपरांत आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास के ऊपर। आज 22 जून है। आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 22 जून सन 1906 ईस्वी में स्वीडन ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो वहीं 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बने और सन 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और अब बात सन 1944 ईस्वी की। अमेरिका ने अपने सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए कानून बनाया, तो वहीं सन 1946 ईस्वी में इंग्लैंड और भारत के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। सन 1978 ईस्वी में प्लूटो ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह चागेन की खोज की गई, तो वहीं सन 2009 ईस्वी में 21वीं सदी की सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया था। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। और अब जान लेते हैं आज के दिन जन्म लेने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। तो सबसे पहले सन 1932 ईस्वी में हिंदी सिनेमा के दिग्गज और प्रसिद्ध खलनायक अमरीश पुरी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो वहीं सन 1900 ईस्वी में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी गणेश घोष का जन्म हुआ। सन 1949 ईस्वी में 3 बार की ऑस्कर विजेता अमेरिकी अभिनेत्री मैरिल स्ट्रीप का जन्मदिन है। तो ये था आज के दिन जन्म लेने वाले व्यक्तियों के नाम। और अब जान लेते हैं आज के दिन किन महापुरुषों ने दुनिया को अलविदा कहा। तो सन 1932 ईस्वी में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार जगन्नाथ रत्नाकर का निधन हुआ। तो वहीं सन 2000 ईस्वी में प्रमुख हिंदी साहित्यकार

केदारनाथ अग्रवाल ने दुनिया को अलविदा कहा और सन 2008 ईस्वी में प्रसिद्ध अमेरिकी हास्य अभिनेता, कॉमेडियन और लेखक जॉर्ज कार्लिन ने दुनिया को अलविदा कहा। तो श्रोताओं, ये थे आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले महान व्यक्ति। और कार्यक्रम में आगे एक नज़र डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक के गतिविधियों के ऊपर। फिलहाल जैसा कि हमने जाना, आज बॉलीवुड के दिग्गज और प्रसिद्ध खलनायक अमरीश पुरी का जन्मदिन है, तो चलिए कार्यक्रम में आज उन्हीं की फिल्म के गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

में आगे एक नज़र डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक के गतिविधियों के ऊपर। फिलहाल जैसा कि हमने जाना, आज बॉलीवुड के दिग्गज और प्रसिद्ध खलनायक अमरीश पुरी का जन्मदिन है, तो चलिए कार्यक्रम में आज उन्हीं की फिल्म के गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

मिस्टर इंडिया फिल्म का भी आपने गीत सुना, और इस गीत को सुनने के बाद चलिए एक नज़र डालते हैं रोहतास एवं कैमूर में आयोजित स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। जिले में रविवार को भीषण गर्मी और लू का कहर जारी रहा। दिन का जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी 34 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। सुबह से ही तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। इधर रोहतास प्रशासन ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के क्लास 5 के नीचे क्लास के संचालन पर 23 जून तक पूर्णतः रोक लगा दी है। इसके ऊपर की कक्षाएं दोपहर 11 बजे से पहले समाप्त कर दी जाएगी। गर्मी का असर सबसे अधिक बच्चों, बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों पर देखा गया। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग सिर और चेहरे को ढककर ही चल रहे थे। रोहतास जिले के 7 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की कड़ी जांच और CCTV कैमरे से निगरानी जैसे सख्त उपाय किए गए थे, ताकि प्रक्रिया को पूरी तरह से कदाचार मुक्त और निष्पक्ष रखा जा सके। नोखा प्रखंड के 2 युवाओं ने 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रखंड के विषैनी खुर्द की आंगनवाड़ी सेविका चंद्रकला देवी और कमलेश कुमार के पुत्र दीपक ने 17वें बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। उनका चयन प्रखंड विकास पदाधिकारी पद पर हुआ। वहीं पेनार गांव निवासी आंगनबाड़ी सेविका इंदु देवी और अशोक सिंह के पुत्र अंकित राज ने BPSC परीक्षा पास की है। उनका चयन अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर हुआ है। दोनों की सफलता से गांव में जश्न का माहौल है। युवाओं में नई प्रेरणा भी दिख रही है।

और अब बात कैमूर जिले की। जिला कल्याण कार्यालय भभुआ में सभी प्रखंड समन्वयक कैमूर की एक अति आवश्यक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता रत्नेश कुमार सिंह जिला कल्याण पदाधिकारी कैमूर ने किया। इस बैठक में रत्नेश कुमार सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के आलोक में अनुसूचित जाति युवाओं के लिए कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन 22 जून को यानी आज लिच्छवी भवन भभुआ में किया जाना है। इस कौशल रोजगार मेले के कई बिंदु होंगे, जिसमें कि कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रोजगार के इच्छुक अनुसूचित जाति के युवाओं का पंजीकरण, परामर्श, पीएम अजय योजना के अंतर्गत कौशल विकास के अवसरों के बारे में, जागरूकता के बारे में जानकारी दी जाएगी।

सेवा प्राधिकार के द्वारा कल यानी रविवार को सिविल सर्जन मीटिंग हॉल में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से नालसा डान स्कीम 2025 विषय पर केंद्रित था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता दिलीप कुमार एवं पैरा लीगल वॉलंटियर दीपक कुमार द्वारा उपस्थित लोगों को नालसा डान स्कीम 2025 के तहत मिलने वाले विधिक अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और हाशिए पर मौजूद लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

और नीट परीक्षा में कैमूर में कुल 1,447 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 100 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कैमूर में 4 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से हुई नीट की परीक्षा।

रविवार को जिले के अलग अलग हिस्सों में उल्लास से पूर्ण माहौल में योग दिवस का आयोजन किया गया। अलग अलग कैमूर के प्रखंडों के गांव में स्थापित 150 सामान्य सेवा केंद्र में भी योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट की गई। सामान्य सेवा केंद्र के जिला प्रबंधक नीतीश कुमार के अनुसार कार्यक्रम आयोजित की वीडियो फोटो भी अपलोड की जानी है, इससे प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह जिले के सभी सेवा केंद्रों में आयोजित हुआ। पिछले एक सप्ताह से इसकी तैयारी की जा रही थी। लोगों को योग प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

तो श्रोताओं, ये था स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। कार्यक्रम में एक नज़र डालेंगे या आगे समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का भी आपने गीत सुना। इसमें हीरो की भूमिका में थे शाहरुख खान और अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी काजोल ने, और इसमें एक सख्त पिता का भूमिका अदा किया थे अमरीश पुरी ने। और अब चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर। भारत ए के लिए खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंद में खेली 94 रनों की पारी वैभव सूर्यवंशी ने, इस खबर को सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर चित्र सहित जगह दी है। दैनिक जागरण लिखता है कि 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ वैभव ने बनाया नया कीर्तिमान। हिंदुस्तान इसी खबर को लिखता है वैभव सूर्यवंशी ने 11 बॉल में ताबड़तोड़ 50 रन जुड़े, प्लेयर ऑफ द मैच बने, शतक से चूके। वहीं दैनिक भास्कर के शब्द हैं वैभव क्रिकेट के दुनिया का अजूबा, 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, सूर्यवंशी ने वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाया। प्रभात खबर ने लिखा है कि सूर्यवंशी के रिकॉर्ड तोड़ पारी से भारत ने खिताब जीता, त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रनों से हराया।

हिंदुस्तान की सुर्खियां है, राष्ट्रीय परिषद ने नीतीश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मुहर लगाई। निशांत जदयू के भविष्य, नीतीश भी ज्यादा वक्त देंगे। नीतीश ने कहा 5 साल में विकसित राज्य बनेगा बिहार। और बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 15 मीटर तक निर्माण पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद बड़ी पहल। और सासाराम में ठाकुरबाड़ी से चोरी हुई 4 दुर्लभ मूर्तियां। साथ ही साथ बिहार के स्कूल कॉलेज में अगले वर्ष से होगी योग की पढ़ाई। दैनिक भास्कर अपने पहले पेज पर लिखता है कि

नीट, PMCH, एम्स और VHU का सॉल्वर 40 लाख में डील, 24 पकड़ाएं जिसमें कि 5 मेडिकल के छात्र, और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर मंत्री स्तर की वार्ता इस हफ्ते, और बिहार स्कूलों में भीषण गर्मी के कारण 30 जून तक मॉर्निंग चलेंगे स्कूल। साथ ही साथ ग्लोबल योग दिवस के अवसर पर 190 से ज़्यादा देशों में धूम, पीएम मोदी ने कोलकाता में लोगों को सिखाया आसन। दैनिक जागरण के हवाले से खबर है, डॉक्टर बनने का सपना संजोए, नीट यूजी में बैठे 20 लाख छात्र, कड़ी सुरक्षा के बीच 5,454 केंद्रों पर दोबारा हुई परीक्षा। और जदयू में बनी सहमति, निशांत ही करेंगे जदयू का नेतृत्व, निशांत बोले, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जदयू बिहार की नंबर एक पार्टी बनेगी, अगले 30 से 40 वर्षों तक जदयू का नेतृत्व करने में सक्षम रहेंगे निशांत, संजय झा।

और भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और पटना सहित 7 जिलों का तापमान 40 डिग्री पार।

और प्रधानमंत्री कोलकाता ने, माफ़ कीजिएगा, कोलकाता में कहा कि 50 की उम्र में 30 वर्ष से ज़्यादा एनर्जी योग से ही संभव। साथ ही साथ अगले वर्ष बिहार के स्कूल कॉलेजों के कोर्स में योग होगा शामिल। सम्राट चौधरी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हुए शामिल। और फीफा विश्व कप में आज अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से रात 10:30 से, दूसरा मुकाबला फ्रांस वर्सेज इराक के बीच खेले जाएगी और तीसरा मुकाबला नॉर्वे वर्सेज सेनेगल का होगा। तो श्रोताओं, ये था समाचार पत्रों की सुर्खियां और अब आज का तापमान जान लेते हैं। आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद थी। और अब श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, तो अपने रेडियो दोस्त सचिन को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद

0: प्रतिरोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
3: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले JD वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। JD वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण

0: वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से

0: ठीक नहीं है, तो वैसे एरिया में जहाँ गंदगी है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंडेमिक एरिया में, शहरी इलाकों में कम है, ग्रामीण एरिया में ज़्यादा मिलता है
1: जी।
0: तो इस तरह से जो है, जैसे सपोज करिए बाहर का चीज़ें लोग खाते हैं
1: जी,
0: है ना, पानी को जो है साफ है, अच्छे से नहीं करते हैं, खाना को ठीक से नहीं पका के खाना खाते हैं
1: जी,
0: हाथ को बार बार जो है नहीं धोना, तो ये सब इनके वजह है टाइफाइड होने के। तो इस वजह से जो है टाइफाइड इनको जो है फैलता है। शरीर के अंगों को देखिए जो है, पहले तो टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं सलमोनेला बैक्टीरिया, वो क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि साफ सुथरा खाना और पानी नहीं होना, तो इनको लेने से वो बैक्टीरिया हमारे मुंह के थ्रू जो है, जब वो पेट में आँत में जाते हैं तो वहाँ जाके चिपक जाते हैं
1: जी,
0: और वो चिपक के वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से वो आँतों को प्रभावित करते हैं। वहाँ से कभी कभी क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया ग्रो ज़्यादा कर जाते हैं तो कभी कभी जो है किडनी में भी पहुँच जाते हैं
1: जी,
0: कभी हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं, कभी कभी ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं। लेकिन कॉमनली जो है देखा जाता है कि बैक्टीरिया जो ज़्यादा इंटेस्टाइन एरिया को, इसके भी कई स्टेजेज होते हैं जो हम आगे चल के आपको बताएंगे
1: जी,
0: जैसे पेरिटोनियम को इफेक्ट कर जाएंगे, गॉल ब्लैडर को इफेक्ट कर जाते हैं, जैसे पीत की जो थैली होती है उसके अंदर इनके जो है ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, कभी कभी लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। तो इनके कई सारे स्टेज में कई सारे इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर अंदर पार्ट में
1: जी।
2: डॉक्टर अभिषेक कुमार जी, टाइफाइड के लक्षण क्या हैं?
0: देखिए टाइफाइड के कई सारे लक्षण हैं। पहले तो इसमें जो है पेशेंट को सपोज करिए टाइफाइड बुखार होता है
1: जी,
0: तो पेशेंट पहले सुस्त कमजोरी सा वीकनेस सा फील करता है
1: जी,
0: पहले वीकनेस होगा, लेथार्जिक होगा, सुस्त होगा, उसके बाद जो है पेशेंट को बुखार आने लगता है, तेज बुखार आता है। इस जो टाइफाइड में जो बुखार का जो पैटर्न होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर, जैसे बुखार आया तो धीरे धीरे करके बुखार बढ़ने लगता है ना। लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर तो आता है, लेकिन बहुत ऐसे मरीज मिलते हैं जिसमें देखा गया है कि हाई ग्रेड फीवर नहीं होते
1: जी,
0: उनको लो ग्रेड फीवर आता है। पेशेंट को खुल के बुखार नहीं आ रहा, पेशेंट का बुखार 99-100 के आसपास रहता है
1: जी,
0: लेकिन पेशेंट उसके साथ में कहता है कि हमारे पेट में भारी भारी भारीपन सा महसूस होता है, कमजोरी सा महसूस होता है, पेट फूला हुआ है, पैखाना कभी कभी लूज मोशन होने लगता है, कभी पेट साफ नहीं होता है, सर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होने लगता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, मस्कुलर पेन्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंट अलग अलग जो है इनका जो है पेशेंट का कंप्लेंट्स आते हैं
1: जी।
2: तो डॉक्टर साहब, क्या लक्षण के आधार पर तय किया जा सकता है कि व्यक्ति को टाइफाइड ही है?
0: हाँ, लक्षण के आधार पे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि टाइफाइड जो है और बुखारों से थोड़ा अलग है
1: जी,
0: क्योंकि इसमें थोड़ा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। जैसे क्लिनिकल आधार पे हम लोग बताते हैं कि पेशेंट को जो है टाइफाइड हो सकता है। दूसरा इसमें ये चीज़ होता है कि डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया हम लोग जो बनाते हैं कि टाइफाइड हो सकता है एरिया के हिसाब से, सपोज करिए रोहतास है
1: जी,
0: तो रोहतास में टाइफाइड कॉमन है
1: जी,
0: तो यहाँ पर हम एक जो है ये बता सकते हैं कि यदि सपोज करिए बुखार का मरीज आता है तो पहले हम लोगों का दिमाग जाता है कि इसको टाइफाइड हो सकता है
1: जी।
0: तो एक जो है एरिया के इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर हम लोग टाइफाइड को डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा क्लिनिकल जो सिम्टम जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है इसके आधार पर हम लोग जो है पेशेंट को बताते हैं कि मे बी टाइफाइड हो सकता है, मे बी मलेरिया भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सिम्टम्स जो है मैच करते हैं, बुखार के सिम्टम्स मैच करते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं
1: जी।
2: डॉक्टर अभिषेक कुमार, टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: ये अच्छी क्वेश्चन है, टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि सावधानी में जिससे होता है उसी को जो है उसी से जो है हम लोग प्रिवेंशन के तौर पे बेसिकली क्या होता है ना, टाइफाइड में जो जैसे मैंने बताया कि जो वजह है
1: जी
0: उसको कम किया जाए। जैसे सपोज करिए हम लोग घर में रहते हैं तो जो भी हम लोग खाना बनाते हैं उसके लिए हम लोग एक्चुअली इसका क्या होता है कि फीकल ओरल ट्रांसफर होता है, फीकल ओरल जो रूट होता है, जैसे सपोज करिए हम लोग टॉयलेट जाते हैं
1: जी,
0: तो वहाँ से यदि हम लोग हाथ को सही से साफ नहीं करते हैं तो वहाँ से स्प्रेड होने का चांस होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि आपको हाथ जो है बार बार धोनी चाहिए
1: जी,
0: हाथ जो है हैंड वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, खाना जो है अच्छी तरह से कुक होना चाहिए, अंडर कुक खाना यदि आप खा रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ सुथरा धो के खाना खाना चाहिए
1: जी।
0: तो एक तरीका ये है, बाहर की चीज़ों से हम लोग को करना चाहिए, जैसे कि तली हुई चीज़ें बाहर के जो रोड के साइड्स में जो मिलते हैं चीज़ें उनको जो है अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को रोक करके हम लोग टाइफाइड को रोक सकते हैं
1: जी।
2: डॉक्टर अभिषेक कुमार, अभी आपने हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताया कि जो टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति है उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। टाइफाइड सभी व्यक्तियों में एक सा होता है या इसके प्रकार अलग अलग होते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: टाइफाइड देखिए, टाइफाइड बेसिकली क्या है कि बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शियस डिजीज जिसको बोलते हैं वो है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड की अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है, टाइफाइड जो है इसकी अलग अलग स्टेजेज बनाए गए हैं
2: जी,
0: है ना। जैसे सपोज करिए पेशेंट को टाइफाइड होता है तो उसके

0: कई सारे स्टेज होते हैं, जैसे सपोज करें एक होता है फेब्राइल, पेशेंट को खूब तेज बुखार आ रहा है, उसके बाद कभी कभी क्रिटिकल स्टेज भी पेशेंट को हो जाते हैं, है ना, फिर बाद में जाके कन्वर्सेंट स्टेज होते हैं, कभी कभी पेशेंट को कैरियर स्टेज बन जाते हैं, पेशेंट ठीक हो गया फिर जो है ठीक होने के बाद कुछ दिन के बाद उसके अंदर फिर से बुखार आ गया
1: जी,
0: तो कैरियर स्टेज। तो इसी तरह से होता है, कभी कभी जो एक्टिव जो केसेस होते हैं हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं, पेशेंट ठीक हो गया, ठीक होने के 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद फिर से बुखार आ गया, तो इस तरह से इनका होता है। इसमें कोई अलग से वो नहीं है कि टाइफाइड के अलग अलग जो है टाइफाइड 1 है 2 है 3, इस तरह से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है डेंगू फीवर के केस में मिलता है, टाइफाइड में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन
1: जी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे भी हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे और भी कई सवालों के जवाब। इससे पहले आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म प्यासा सावन से, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की है, और शब्द हैं संतोष आनंद।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में फिल्म प्यासा सावन का यह खूबसूरत गीत, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: डॉक्टर अभिषेक कुमार, हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं। टाइफाइड को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं कि एक बार यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो लंबे समय तक फिर से टाइफाइड होने के चांसेस कम होते, जबकि देखा गया है कि टाइफाइड होने के कुछ दिनों के बाद कुछ ही दिनों में फिर से टाइफाइड उस व्यक्ति को हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: टाइफाइड जो है बेसिकली और बुखारों से अलग इसी से है, जो हमने पहले आपको बताई, टाइफाइड कैरियर कहा जाता है इसको
1: जी।
2: इसमें बेसिकली क्या होता है टाइफाइड में कि आजकल टाइफाइड के जो बैक्टीरिया, जैसे मैंने बोला कि इन्फेक्ट करके आंत में जाके चिपक जाता है
1: जी।
2: फिर वहां से ग्रो करके जाके पीत के थैली में चला आता है, लीवर में जाता है, फिर वो धीरे धीरे लैट्रिन के थ्रू बाहर निकलता है ना, तो सालों तक निकलते रहता है इसके अंदर। तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि टाइफाइड को ग्रामीण एरिया में जितने जो भी ट्रीटमेंट लोग करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट आधा अधूरा करते हैं। इसकी जो डोज होती है ट्रीटमेंट करने की कि पेशेंट को जो है दवाइयाँ 10 से 14 दिन तक, कभी कभी किसी मरीज यदि ज़्यादा उसको फीवर आ रही है तो उसको 21 दिन तक दी जाती है
1: जी।
2: लेकिन लोग क्या करते हैं, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको 5 दिन 7 दिन आधा अधूरा उनको ट्रीटमेंट करते हैं। तो आधी ट्रीटमेंट की वजह होने से पेशेंट को कैरियर स्टेज बन जाता है
1: जी।
2: बेसिकली पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये देखा जाता है कि टाइफाइड की जो बैक्टीरिया, इसकी टेंडेंसी भी होती है इस तरह से कैरियर स्टेज, क्योंकि वो धीरे धीरे स्प्रेडिंग होते रहता है, स्टूल के थ्रू 1 साल तक स्प्रेड होते रहता है, स्प्रेडिंग होते रहता है। तो कैरियर स्टेज बनने की वजह से पेशेंट को सपोज के टाइफाइड हुआ, अभी टाइफाइड होने के बाद पेशेंट जो है अभी ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गया, फिर जो बैक्टीरिया होता है जो गॉल ब्लैडर में या इंटेस्टाइन में जो पड़ा हुआ है वो डोरमेंट स्टेज में रहता है
1: जी।
2: लेकिन जब दोबारा उसको फीवर आता है फिर वो एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव कैसे होता है? आपने बाहर की चीजें खा लिया, आपने साफ सफाई नहीं किया, आपने वो भोजन को ठीक से पकाया नहीं, अंडर कुक खाया, कोई बाहर की चीजें खाया, पानी जो है साफ सुथरा नहीं पिया, तो उससे क्या करता है बैक्टीरिया दोबारा ग्रो कर जाता है, उसकी वजह से फिर से फीवर आने का चांस होता है और ये रिकरेंट करता है फीवर। जैसे सपोज के 2 महीने पे आ जाता है, कभी 15 दिन पे आता है, एक बार आपको टाइफाइड हो गया तो 8 महीने बाद भी टाइफाइड आ जाता है। लेकिन बेसिकली जो है टाइफाइड का जो कैरियर देखा गया है ये मेनली एंडेमिक एरिया में देखा जाता है, आप जगह चेंज करते हैं तो आने का चांस कम हो जाता है ना, तो इस तरह से रिकर करता है।
1: अक्सर लोगों को लगता है कि टाइफाइड जैसी बड़ी बीमारी सिर्फ युवाओं और वयस्कों को ही होती है, बच्चों में यह ना के बराबर देखने को मिलती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
2: देखिए, टाइफाइड कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, एक्चुअली एक कॉमन बीमारी है, बड़ी बीमारी नहीं है, कॉमन बीमारी है और स्पेसिफिक एरिया में, जैसे मैं बताया, बच्चों में भी होती है, लेकिन बच्चों में

0: कम देखा जाता है। बच्चों में कम इसलिए देखा जाता है कि बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, है ना, और उनके अंदर जो उनके जो आंत है उनके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने की उतनी संभावना नहीं बन पाती है
1: जी,
0: है ना। उनके म्यूकोशल जो है स्ट्रांग होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रोप्रिया एरिया है उस अच्छा क्वालिटी से ग्रो करते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो उसमें ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है बच्चों में नहीं होता है, है ना। आजकल तो देखा कि एंडेमिक एरिया में बच्चों में भी होता है
1: जी
0: टाइफाइड, तो कॉमनली नहीं होता है बट बच्चों में भी होता है, और बच्चों में भी कैरियर स्टेज बनते हैं
1: जी,
0: कि एक बार बच्चा इन्फेक्ट हो गया तो उसको भी बार बार टाइफाइड होता है। ऐसे कई मरीज हमारे पास आते हैं बच्चे जिसमें बार बार टाइफाइड हो रहा है
1: जी।
0: पहले थोड़ा टेंडेंसी कम था बच्चों में, लेकिन आजकल जो देखा गया वो बच्चों में भी टाइफाइड हो रहा है
1: जी।
2: डॉक्टर साहब, बच्चों में जो टाइफाइड होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं?
0: बच्चों में भी देखिए सेम लक्षण है जो बड़ों में होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो है बच्चों में, जैसे सपोज करिए बड़ों के केस में टाइफाइड पहली बार हो रहा है, तो उनको हाई ग्रेड फीवर करके आता है। बच्चों में जनरली ऐसा नहीं होता है। बच्चों जैसे होता है कि इनिशियल स्टेज में बताते हैं कि हमें पेट में दिक्कत हो रही है
1: जी,
0: कभी पेट हैवी सी हो रही है, कभी सर में दर्द हो रहा है, है ना। बच्चों में लूज मोशन की जो है कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं
1: जी,
0: और बड़ों में जैसे लूज मोशन की जो कंप्लेन आती है टाइफाइड में, वो बाद में जाके आती हैं। शुरू में फीवर आती हैं, बाद में लूज मोशन का कंप्लेन, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट बच्चों के केस में ऐसा देखा जाता है कि वो पेट का सिम्टम पहले ज़्यादा पहले बताते हैं
1: जी,
0: इसमें डायरिया होगा, लूज मोशन, कंस्टिपेशन होगा, पेट फुला फुला सा महसूस होगा, पेट में दर्द होता है, उनके बाद उनको फीवर आता है, ठंडी लग के बुखार आती है, तो इस तरह से कंप्लेन आते हैं। और कभी कभी बच्चे बताते हैं कि सर में दर्द होती है, आँख के पीछे दर्द होती है, मस्कुलर पेन होता है, ज्वाइंट पेन ज़्यादा मिलता है बच्चों के केस में, ऐसा भी देखा गया।
2: डॉक्टर साहब, यदि किसी व्यक्ति को कई दिनों से बुखार आ रहा हो, इसके साथ ही उसे सिर दर्द की शिकायत हो रही है और शरीर में दर्द, भूख की भी परेशानी हो, पेट में दर्द हो, तो क्या इसे टाइफाइड के लक्षण माने जा सकते हैं?
0: बिल्कुल, जितना भी आपने बताया कि जो है भूख की शिकायत हो, भूख की शिकायत सारी बुखार में ही मिलती है, लेकिन टाइफाइड में काफ़ी कॉमन है
1: जी।
0: कि पेशेंट जो है, जैसे कि हमने बताया कि आँख से वो लीवर में चला जाता है, तो पेशेंट शुरुआती स्टेज में पेशेंट को जो है सर में दर्द होता है, पेट में दिक्कत होती है, भूख नहीं लगती है
1: जी।
0: तो ये जितना भी सिम्टम्स है इसे हम बता सकते हैं, 70-80% कैसे बता सकते हैं कि टाइफाइड हो सकती है
1: जी।
0: लेकिन ये टाइफाइड जो है, इनकी जो सिम्टम होती है अदर बुखार, जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया, इनसे मैच करती है, लेकिन जरूरी नहीं है। डेंगू में जैसे बताया आपको, जैसे कि डेंगू में हाई ग्रेड करके फीवर आती है, सर में दर्द होता है
1: जी,
0: तो उस तरह से सिम्टम नहीं आ पाते हैं टाइफाइड में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैच करती है इसके आधार पर, बट कुछ जांच होते हैं जिसके आधार पर हम लोग जो है इसको डायग्नोस करते हैं कि ये पेशेंट को टाइफाइड। जितने भी मरीज हैं 90% मरीज जो है अभी टाइफाइड के आ रहे हैं।
2: डॉक्टर अभिषेक कुमार, टाइफाइड विषय पर आपने हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए रेडियो परिवार की ओर से और साथ ही साथ अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।
2: श्रोताओं, कल यानी 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को अपने जीवन में योग को शामिल करने के लिए उनमें जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। 21 जून को योग दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2015 में हुई। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया और इसे 177 देशों से समर्थन मिला, जो किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के लिए सबसे अधिक संख्या थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। योग अच्छे स्वास्थ्य का विज्ञान एवं कला है। यह एक आध्यात्मिक क्रिया है जो मन और शरीर को एक साथ कार्य करने के लिए निर्देश देता है और यह बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है। योग के समग्र दृष्टिकोण से जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित होता है। इसके अलावा योग अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रोगों को रोकने और आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का निदान करने के लिए जाना जाता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका बहुत महत्व है। योग ध्यान का एक रूप है जो लोगों के जीवन को समग्र रूप से बेहतर बनाता है। यह मन, शरीर और आत्मा के लिए शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह हमारे शरीर को पुनर्जीवित करता है और शांति को बढ़ावा देता है। योग एक ऐसी प्रथा है जो हजारों सालों से चली आ रही है और इसकी जड़ें भारत में है। पहले लोग लंबे और स्वस्थ जीवन जीने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करते थे। योग का अभ्यास करना बेहद सुरक्षित है और हर उम्र के लोगों, यहाँ तक कि बच्चों के

0: भी आनंददायक है। जब हम शांत मन से गहन चिंतन में होते हैं तो हम अपने भीतर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। योग के अभ्यास से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन प्राप्त होता है। योग शरीर और मन को जोड़ता है, हमें शरीर और मन के अनुशासन के बारे में सिखाता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो लोगों को लंबा स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। आइए इस दिवस पर हम भी अपने जीवन शैली में योग को शामिल करें और नियमित रूप से योग करें। करें योग और रहें निरोग। तो श्रोताओं, इसी के साथ है हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम का आज का यह एपिसोड अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में नए विषय के साथ हम फिर आप सबों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त रवि भूषण को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। स्वर एवं संकलन रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला प्रसारण अब से बस कुछ ही पलों में।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। पूर्वाह्न के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भरत शर्मा व्यास की आवाज़ से। एल्बम का नाम है आधी आधी रतिया के।

भरत शर्मा व्यास के गाए इसी गीत के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है गैर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आलोक रंजन और ज्योति तिवारी की आवाज़ से। गीतकार संगीत कुमार अशोक कुमार दीप और एल्बम का नाम है भाग गइल अखिया।

0: पल्लवी जोशी की आवाज़ में भी आपने गीत सुना। एल्बम का नाम था बलम छोरी ना कलैया। गीतकार थे सूरज कुमार निर्मल और संगीतकार रोहित कुमार बॉबी का। और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं धनंजय धाकर और शिल्पी राज की आवाज़ों में। एल्बम का नाम है सुना ये संवरिया। राकेश मिश्रा के बोल हैं, ओझा गोविंदम का संगीत है।
1: सुनना
2: का कहता
1: है ये हमारा पास आवन।

0: इसी गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
2: रंग तरंग
1: आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की। पद्मश्री पद्मजा पेनानी जोगेलकर की आवाज में संदीप गुप्ते के द्वारा लिखी गई और महेश खानोलकर के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो

0: ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली। कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अभी संदेशों के पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोलों से सजी हुई, जिसके संगीतकार फैयाज शौकत है, उस गजल को। आइए चलते हैं अगली गजल की ओर, जिसे गाया है इंद्राणी रिजवी ने, कतील सिफाई ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं बेनी सतामकर।

0: बसा ले जा।
1: हम सुन रहे थे नगमा जिसके गायक और संगीतकार हैं ए हरिहरन और जिसके गीतकार मुमताज राशिद।
2: अहमद फराज की एक ताजा गजल पेश खिदमत है। ये गजल आपको जरा इस तचल की याद दिलाएगी।

0: हम सुन रहे थे गीतकार अहमद फराज के बोलों से सजी हुई पंकज उदास के द्वारा गाई और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस गजल को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं

एल्बम से, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित ने। शाहबी अब्बास शाहदाबी ने इसे बोल दिए हैं और महेश चंदेल ने इसे संगीत

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था।

0: भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह जगजीत सिंह की आवाज में इस नगमे को, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

हम सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी नगमा, जिसे गाया भूपेंद्र ने और संगीतबद्ध किया भूपेंद्र ने ही, और शब्द हैं गुलजार के। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति

0: का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी विरसिक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: सम्मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ

0: साथ मेरी गजल सुन, रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा, मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की

महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को, आज यादों की महफिल के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे नमस्कार।

0: यशस्वी मुखिया। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

खून बहल नस नस में देख के गुलामी देख के।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से अंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार ओपन जिम पार्क सरकार भवन तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पशुपालन अस्पताल फिर चिल्ड्रेन पार्क स्टेडियम बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था काफी तरह का बेहतर कार्य किया है इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गाँव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में 3,96,000 से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि अंतरित की है। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत वासंतिक रबी 2025-26 के तहत इस वर्ष मार्च महीने में आए आंधी तूफान से हुई फसल क्षति के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 13 जिलों के प्रभावित किसानों को अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि और आवेदन प्राप्त होने पर सत्यापन के बाद उन किसानों को भी अनुदान राशि दी जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण विकास योजनाओं को तत्परता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर जिले के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वो रजिस्ट्रार के समक्ष इस मामले का उल्लेख करे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। याचिका में मुठभेड़ की घटना की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई है। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड संख्या 10 में कल रात एक श्राद्ध कार्यक्रम में भोज खाने के बाद 150 लोग की तबीयत खराब हो गई। पीड़ित लोगों को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। इधर प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। इसके कारण अब तक सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। हालांकि उत्तर पूर्व भागों के जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल से पटना, गया और सारण समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भी मानसून के सक्रिय होने से बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। नेपाल में बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने

0: बताया कि इस वर्ष पहली बार नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया है। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए देर रात बराज से 1,955 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। किशनगंज के नए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता है। इधर जहानाबाद के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया ने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पटना स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में आज से 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर्मियों को कृषि संबंधी सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, आंकड़ों के संग्रहण, गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी अन्य विषयों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप असीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में 3,96,000 से ज़्यादा किसानों के खातों में DBT के तवसुत से 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी रकम मुंतकिल की। ये रकम ज़रई इनपुट सब्सिडी मंसूबा के तहत बहारी रबी 2025-26 के तहत इस साल मार्च माह में आए आंधी तूफान से हुए फसल नुकसान के लिए दी गई है। वज़ीर-आला जनाब चौधरी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस मंसूबा के तहत 13 अजला के मुतासरा किसानों को सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि मजीद दरख्वास्त मौसूल होने पर तस्दीक के बाद उन किसानों को भी सब्सिडी की रकम दी जाएगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और वज़ीर आफात मैनेजमेंट रत्नेश सदा और वज़ीर ज़रात विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत की सदारत में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत रियासत सतही स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई। मीटिंग में सभी महकमों के अफसरान को देही तरक्याती मंसूबों को मुस्तैदी से पूरा कराने की हिदायत दी गई है। मुख्तलिफ ज़िलों में के ज़िला मजिस्ट्रेट और दीगर आला अफसरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भोजपुर जिला के शाहपुर में पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी के मौत के मामले में फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। अदालत ने अर्जी गुजार को हिदायत दी है कि वो रजिस्ट्रार के सामने मामले का जिक्र करें, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जांच कराने का CBI अर्जी में एनकाउंटर के वाक़े की CBI मुतालबा किया गया है। सुपौल जिला के जदिया थाना इलाके के तहत मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड नंबर 10 में कल रात एक श्राद्ध तकरीब में भोज खाने के बाद 150 लोगों की तबीयत खराब हो गई। मुतासरा लोगों को त्रिवेणीगंज सब डिविजनल अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल सभी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उधर इंतजामिया ने पूरे वाक़े की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में बारिश के सबब कोसी नदी की आबी सतह में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हमारे सुपौल के नामानिगार ने बताया कि इस साल पहली बार नदी की आबी सतह 1 लाख क्यूसिक के अदादो शुमार को पार कर गया है। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए देर रात बराज से 1,955 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। जिला इंतजामिया ने बढ़ती हुई आबी सतह के मद्देनज़र चौकसी बढ़ा दी है। किशनगंज के नए जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने आज अपना ओहदा संभाला। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला में सरकारी मंसूबों का मौसर नफाज उनकी अव्वलिन तरजीह में शामिल है। वहीं जहानाबाद की 9 तकर्रुर जिला मजिस्ट्रेट छिरिंग वाई भुटिया ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। पटना वाक़े नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस में आज से 4 रोज़ा रीजनल तरबियती कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। तरबियत प्रोग्राम के दौरान मुलाजमीन को ज़राअत से मुतालिक सर्वे के काम, सिस्टम, इदादो शुमार को जमा करने, मेयार कंट्रोल से मुतालिक दीगर मौजू की मालूमात दी जा रही है। रियासत में ज़्यादातर हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून से की सरगर्मियाँ धीमी पड़ गई हैं। इसकी वजह से मामूल से 42% कम बारिश हुई है। हालांकि शुमाल मशरक़ी हिस्से के अजला में मामूल से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि कल से पटना, गया और सारण समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में भी मानसून के सरगर्म होने से बारिश का इम्कान है। महकमा ने आइंदा 24 घंटे

0: के दौरान अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल अजला में कुछ मकामात पर तेज हवा के साथ भारी बारिश का अंदेशा जाहिर किया है। इस दौरान कुछ मकामात पर बिजली गिरने का वाकया भी हो सकता है। इधर राजधानी पटना समेत रियासत के जुनूब मगरबी हिस्सों में हफ्स भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर था, 621 किलोहर्ट्ज पर। अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10.2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। भारत संचार निगम लिमिटेड जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में BE या BTEC होना चाहिए। न्यूनतम आयु की सूचना नहीं है। अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए देखें वेबसाइट, पता है www.bsnl.co.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है बुनके वही गली नली है, वो पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, तो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय के रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बनेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से दो

0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल है। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफल

0: सतर्कता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन

कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा

0: भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

0: सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, भरत व्यास के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा। संजोग फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं। और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
2: सही बात,
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
2: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
2: बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं।

0: सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है

0: कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
2: पिछले भाग में आपने सुना
3: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
4: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
5: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का 4वां और अंतिम भाग।
3: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में 1 बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी

0: और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
1: इतनी जल्दी सुधली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। यह वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। यह आभूषण, यह वस्त्र, यह सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
2: अम्मा ये देखता क्या हूं?
3: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
2: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
3: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
2: बहुत अच्छा होता।
1: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
2: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूं।
1: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
0: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
2: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
1: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके

0: बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
3: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
3: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
4: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे

0: तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
1: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
2: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
1: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगले क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
4: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
3: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, उनका नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
4: हाँ, ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक

0: दबाव सा शुरुआत में लगता है,
1: बिल्कुल,
0: फिर
1: बिल्कुल.
0: वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब
1: हाँ.
0: अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है.
1: बिल्कुल. और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा. और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है. और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं. उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा. उनको पढ़ाई से पीछे भागती, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है. तो नए सत्र में ये चीजें रहती. तो वही माता पिता और शिक्षक
0: देखो
1: बच्चों
0: इनकी,
1: की मदद
0: हाँ,
1: करें, है
0: बिल्कुल,
1: ना?
0: इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को. छोटे बच्चे जहाँ और अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना. फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें. फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे. फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है. अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है. जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है. तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था,
1: रूटीन ही नहीं था कहना चाहिए,
0: और अब एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल. उनको छोटी छोटी चीजें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी. इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा,
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो हम वहीं
0: देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के. एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है. नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का.
1: बिल्कुल. और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है. फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण. इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं. लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए. मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था. लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना?
0: बिल्कुल, क्योंकि ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है.
1: बिल्कुल. तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराया नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको.
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने
1: हम
0: वाली है।
1: इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
0: बिल्कुल, गर्मी
1: और
0: से
1: हर एक अच्छी चीज के
0: जी
1: साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती
0: क्योंकि
1: है।
0: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो
1: बिल्कुल
0: मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहले तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और
1: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से हैं ये और कह रही हैं कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी, और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है, और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जहां पानी जमा रहता है वहां पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि अपने जो आसपास की, आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो, और सफाई करें। और ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है
0: उसी में,
1: तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, और शाम जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़की

0: आप बंद कर दीजिए,
1: बिल्कुल
0: खिड़कियों में या दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे और मच्छरों से
1: और ये
0: बचना
1: इसमें
0: है।
1: ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी
0: बिल्कुल
1: बात है, क्योंकि विशेष तौर पे मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल
1: छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे बांह
0: पूरे
1: के
0: पहनाए।
1: और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो,
0: और दीपा
1: लेकिन
0: इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर
1: जी
0: हम गहरे रंगों के, भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं
1: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं
0: जी।
1: चाहते।

0: फिर से तो
1: अब तो भाई
2: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक, गरम मसाला ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनी की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा, और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलुओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर ये सब हल्का हल्का वो रखना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला। तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
1: अच्छा।
2: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं, उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना
1: जी।
2: आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं। तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स

0: होते नहीं हैं, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है। अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देयर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आया कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस होगी फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं। अगेन, अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
1: जी,
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था, शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद
1: है। क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी
0: जी।
1: की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं
0: जी
1: हम,
0: जी
1: एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP
0: जी
1: करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे
0: जी
1: भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने
0: जी
1: को, फिर
0: जी
1: 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें।
0: जी
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वज़न कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया, तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक एक साल पहले हुई थी और कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के, डॉक्टर है सुसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वे वज़न नहीं कम कर पा रहे और

0: नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम
1: कर
0: रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूँ, बैठे रहेंगे, वजन।
2: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है, साथ ही आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। शाम के 4:17 होने वाले हैं। सांध्यकालीन विशेष प्रसारण सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:20 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम लोक माधुरी। संध्याकालीन प्रसारण सभा में वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति संगीत का प्रसारण होगा 5:10 पर। महिला भवनों का कार्यक्रम घर आंगन प्रसारित होगा 5:30 पर। 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। गांव घर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:10 से।

भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का प्रसारण होगा शाम 7:00। गुड इवनिंग रोहतास, ये सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। और 7:25 पर हम आपको लेकर चलेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र।

ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा बंदगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मन कबत एवं ख्वाजा दुआ आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग प्रसारित होगा रात्रि 10:00। और चित्रपट तराने जो कि हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम है इसे आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। शाम के 4:20 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम के आरंभ में आपको हम सुनवाते हैं एक श्रृंगार गीत। इसे हमने लिया है एल्बम राजा पिया जानी से और इसे गाया है भरत शर्मा व्यास ने।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: लोक माधुरी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक विवाह गीत। आवाज़ है शारदा सिन्हा की और एल्बम है हम त मंगनी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी है वैसी पंचायत से, गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। और बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ पे हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: श्रोताओ, लोक माधुरी कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मदन राय की आवाज़ में। यह निर्गुण गीत है और इसने हमने लिया है एल्बम निर्गुण गीत से।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: श्रोताओ, मदन राय की आवाज में आइए अब आपको सुनवाते हैं एक पारंपरिक लोकगीत। एल्बम है बलम गईले झरिया।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: घर सामानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे है की गली नली बना रहा है हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है। बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है। आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, उस सब के बना रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: श्रोताओं आप आकाशवाणी सासाराम से सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुन्ना सिंह की आवाज़ में। यह श्रृंगार गीत है और इसे हमने लिया है एल्बम आधी आधी रतिया के।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जाए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया जो है, कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: श्रोताओ, अब हम आपको एक पारंपरिक लोकगीत सुनवा रहे हैं, आवाज़ स्नेहलता की, और हमने इसे लिया है एल्बम कॉमन रंग ननदी तोर।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अंग्रेजी में समाचारों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेत्से बटमुक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद

0: महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईए, डीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। साथ ही आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, रचना कैफी आज़मी की और संगीत है मदन मोहन का। इसे हमने लिया है फिल्म हकीकत से।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदन के अंतर्गत कुछ भक्ति गीत। आरंभ में आपको हम सुनवा रहे हैं एक गणेश भजन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आइए अब आपको हम सुनवाते हैं एक राम भजन।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधन समाप्त हुआ। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 होने वाले हैं। प्रस्तुत है महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को रीभा का प्यार भरा नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। आज हम चर्चा करेंगे पर्यटन आर्थिक विकास का साधन विषय पर। वहीं ब्यूटी टिप्स में जानेंगे त्वचा के साथ साथ हाथ पैरों की देखभाल हम कैसे करें।

कार्यक्रम के बीच बीच में गीत संगीत का भी आनंद लेंगे। वहीं कानून हमारे लिए में माता पिता की देखभाल का अधिकार विषय पर भी कुछ बातें होंगी। सखियों, घूमना फिरना वाकई सुकून भरा होता है। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है, बल्कि हमें नई संस्कृतियों को जानने और ज़िंदगी को एक नया नज़रिया देने का मौका भी देता है। यह रोज़मर्रा की भागदौड़ से ब्रेक देता है, जिससे मूड अच्छा होता है और ताजगी महसूस होती है। नई जगहों पर नए लोगों से मिलने से हमारे सोचने का दायरा बढ़ता है और क्रिएटिविटी में सुधार होता है। मन, शरीर और आत्मा को खुश करने के लिए घूमना फिरना सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। बाहर घूमने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों को जानने का मौका मिलता है, उस जगह की संस्कृति के बारे में पता चलता है। सखियों, पर्यटन किसी भी क्षेत्र या देश के आर्थिक विकास का एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावी साधन है। यह न केवल रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत है, बल्कि स्थानीय बुनियादी ढांचे, सड़क परिवहन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोजगार सृजन में पर्यटन की अहम भूमिका है। होटल परिवहन, टैक्सी, बस, ट्रेन, टूर गाइड और स्थानीय कला शिल्प से जुड़े उद्योगों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। वहीं विदेशी पर्यटकों की यात्रा और खरीदारी से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी वृद्धि होती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार को सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे और संचार जैसी सुविधाओं का तेजी से विकास करना पड़ता है। इससे स्थानीय निवासियों का जीवन स्तर भी सुधरता है। जब पर्यटक स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प की दुकानों और खान पान के केंद्रों पर खर्च करते हैं, तो कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारियों की आय में सीधे वृद्धि होती है। सरकारी राजस्व वृद्धि में भी पर्यटन की भूमिका है। पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों, टैक्स, प्रवेश शुल्क, होटल बुकिंग्स से सरकारों को भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जनहित के कार्यों में किया जाता है। पर्यटन आर्थिक विकास का ही सिर्फ साधन नहीं है, पर्यटन ज्ञान वृद्धि का भी साधन है। पर्यटन से हमें नई नई बातें जानने का अवसर मिलता है। पर्यटन प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगह पर किया जाता है। जब हम किसी ऐतिहासिक जगह पर जाते हैं, तो हमें वहाँ के माध्यम से अपने प्राचीन इतिहास के बारे में भी जानने का अवसर मिलता है, जिससे हम इतिहास को ठीक ठीक समझ पाते हैं। सखियों, पर्यटन से स्थानीय कला और कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और पारंपरिक वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं। जब पर्यटक स्थानीय वस्तु और हस्तशिल्प कपड़े खरीदते हैं, तो स्वाभाविक है कि इससे आय में वृद्धि होती है। इससे ग्रामीणों का उत्साहवर्धन होता है। इससे ग्रामीण कलाकारों, बुनकरों और छोटे व्यापारियों के आय में सीधा सुधार भी होता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई सड़कें, रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे और साफ सफाई की व्यवस्था करती है। इस विकास का लाभ केवल पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले स्थानीय नागरिकों को भी मिलता है। विदेशी पर्यटक जब हमारे देश में आते हैं, तो अपनी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में बदलते हैं। इस पैसे का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में होता है। बेशक पर्यटक आर्थिक विकास का साधन है। सखियों, अब आइए एक गीत सुनते हैं।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: सखियों आइए चर्चा की ओर चलते हैं। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है क्योंकि यह एक स्वाभाविक मानवीय इच्छा है। बाहरी रूप रंग और पहनावा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, लेकिन असली सुंदरता आपके समग्र दृष्टिकोण, विचारों और जीवन शैली में छिपी होती है। त्वचा को सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए अंदरूनी पोषण और बाहरी देखभाल दोनों जरूरी है। अपनी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, मौसमी फल खाएं और कम से कम 7 घंटे की नींद लें। नहाने के बाद और रात में सोने से पहले त्वचा में नमी

0: ले आ गया ना गिट बैग।
1: RBI कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
3: सखियों आइए चर्चा की ओर चलते हैं। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है क्योंकि यह एक स्वाभाविक मानवीय इच्छा है। बाहरी रूप रंग और पहनावा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं लेकिन असली सुंदरता आपके समग्र दृष्टिकोण, विचारों और जीवन शैली में छिपी होती है। त्वचा को सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए अंदरूनी पोषण और बाहरी देखभाल दोनों जरूरी है। अपनी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, मौसमी फल खाएं और कम से कम 7 घंटे की नींद लें। नहाने के बाद और रात में सोने से पहले त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए अच्छी क्रीम या एलोवेरा जेल लगाएं। घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का प्रयोग जरूर करें, ये त्वचा को धूप से बचाती है। सखी त्वचा को हमें ख्याल मौसम के हिसाब से रखना होता है। गर्मी में हमारी त्वचा जहाँ तेज़ धूप और पसीने के कारण झुलस जाती है वहीं ठंड के मौसम में सुर्ख पड़ जाती है, यानी कि मौसम का सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है। गर्मी में डिहाइड्रेशन और नमी की कमी आम समस्या है। अत्यधिक गर्मी में पसीने के रूप में शरीर का पानी बाहर निकल जाता है। नमी की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और उसमें प्राकृतिक लचीलापन खत्म हो जाता है। हाइड्रेशन बना रहे इसके लिए पर्याप्त पानी लें। मौसम के अनुरूप फलों, हरी साग सब्जियों का सेवन करें। फलों का जूस भी आहार में शामिल करें। सखियों हम अक्सर चेहरे की देखभाल में इतने व्यस्त रहते हैं कि हाथ और पैर अनदेखे रह जाते हैं, जबकि यह शरीर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अंग है। हाथ और पैरों की त्वचा हमारे चेहरे की तुलना में अधिक रूखी होती है, इसलिए इन्हें खास देखभाल की ज़रूरत होती है। इन्हें सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें इनका भी ख्याल रखना होता है। हाथ और पैरों की मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। आप चीनी और नींबू के रस को मिलाकर हल्के हाथों से त्वचा पर रगड़ सकती हैं, स्क्रब का काम करता है। वहीं नहाने के तुरंत बाद हाथ और पैरों पर बॉडी लोशन या कोई अच्छी हैंड और फुट क्रीम लगा सकती हैं। रात को सोने से पहले नारियल तेल, बादाम का तेल या ग्लिसरिन का भी प्रयोग आप कर सकती हैं। इससे भी हाथ पैर की त्वचा नरम बनी रहती है। आप चाहें तो पेडिक्योर और मैनीक्योर से भी अपने हाथ पैर को स्वस्थ रख सकती हैं। सबसे आसान तरीका है हाथ पैर को साफ सुथरा रखें और उसके ऊपर मौसम के अनुसार अपनी त्वचा को ध्यान में रखकर कोई क्रीम या तेल का प्रयोग करें। तो सखियों आइए एक गीत सुनते हैं।

सखियों, गीत के बाद आइए कानून हमें हमारे लिए माता पिता की देखभाल के अधिकार के बारे में कुछ जानते हैं। हर व्यक्ति के जन्मसिद्ध और मूलभूत अधिकार होते हैं जिन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या देश के भेदभाव के बिना प्राप्त होता है। एक अभिभावक के रूप में भी अपना अधिकार होता है। आपको अपने बच्चे के साथ रहने का अधिकार है और आपको यह तय करने का अधिकार है कि आपका बच्चा कैसे बड़ा होगा। माता पिता को अपनी संतान से भरण पोषण और देखभाल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। माता पिता जो अपने आय से असमर्थ हैं, वे अपनी संतानों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भोजन, आश्रय, वस्त्र और चिकित्सा के लिए मासिक भत्ते की मांग कर सकते हैं। यदि माता पिता ने अपनी संपत्ति या घर बच्चों के नाम इस शर्त पे किया है कि वे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे और बच्चे बाद में उनकी उपेक्षा करते हैं, तो कानूनन उस संपत्ति का ट्रांसफ़र धोखाधड़ी माना जाता है। माता पिता उसे रद्द करवा सकते हैं, संपत्ति को वापस ले भी सकते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम इस विशेष कानून को दिसंबर

नवंबर 2007 में पारित किया गया। इसके माध्यम से माता पिता की देखभाल और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना बच्चों और कानूनी उत्तराधिकारियों का एक बिना शर्त कानूनी कर्तव्य बना दिया गया। यदि बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो माता पिता भरण पोषण न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता अपने संतान से दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों या रिश्तेदारों को बेदखल भी करा सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता अपनी संपत्ति से दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों या रिश्तेदारों को बेदखल भी करा सकते हैं और माता पिता की देखभाल और भरण पोषण का कानून बुजुर्गों को उनके सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है ताकि कोई भी माता पिता अपने को असहाय और असुरक्षित महसूस न करे। तो आइए बहनों एक और गीत सुनते हैं।

सखियों कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। अब आप सबसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अपनी सखी रीभा को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं भोजपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, आप एक बरसाती सुन रहे थे लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत। आवाज़ थी रीना सिन्हा की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 6:05 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए भोजपुरी बुलेटिन।
1: प्रणाम, ये आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ अनिकेत कुमार पाठक से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के 3,96,000 से ज्यादा किसानन के खाता में डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपया से ज्यादा के अनुदान राशि भेजले। ई रुपया कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत वासंतिक रवि 2025-26 में यही साल मार्च महीना में आयल आंधी तूफान से भयल फसल के नुकसान खातिर दिहल गई बा। मुख्यमंत्री श्री चौधरी सभा के संबोधित करत कहले कि यह योजना के तहत 13 गो जिला के प्रभावित किसानन के अनुदानन दिहल गइल बा। उ कहले कि आउरी आवेदन मिलला पर जांच के बाद आओ किसानन के अनुदान के राशि दिहल जाई। ए मौका पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के संगे संगे आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहलन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न कि चंपारण इलाका के देश के एगो बड़ गन्ना उत्पादक क्षेत्र के रूप में विकसित करे खातिर विशेष कार्य योजना के तहत तेजी से काम कल जा रहा बा। मुख्यमंत्री आज पटना में गन्ना उद्योग विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारी लोगन के राज्य के 9 गो बंद पड़ चीनी मिलन के फिर से चालू करे आ 25 गो नया चीनी मिलन के स्थापना की योजना में तेजी लावे के निर्देश दिले। मुख्यमंत्री कहलन कि बिहार में गन्ना आधारित उद्योगन के विकास के बड़ संभावना बा। उ गन्ना के पैदावार बढ़ावे, किसानन के निमन बाजार दियावे और बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2006

0: 26 के तहत ज्यादा से ज्यादा निवेश खींचे पर जोर देलन। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कहले बाड़न कि दाखिल खारिज के हर मामला के निपटावे से पहले ओकर मिलान सरकारी भूमि अभिलेखन से जरूरी रूप से कैल जाए। श्री जायसवाल पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत करत कहले कि विभाग इस संबंध में सब जिला अधिकारियन के निर्देश जारी कर देले बा। उ कहलन कि एकर मकसद सरकारी जमीन पर गलत तरीका से जमाबंदी कायम होके के गुंजाइश के खत्म कैल और सरकारी संपत्ति के सुरक्षा पक्का कैल बा। सुप्रीम कोर्ट भोजपुर जिला के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी के मौत मामला में तुरंत सुनवाई से मना कर देले बा। अदालत याचिकाकर्ता के निर्देश देले बा कि उ रजिस्ट्रार के सामने ए मामला के रखस, जेकरा बाद आगे के प्रक्रिया तय कैल जाए। याचिका एह मुठभेड़ में घटना के सीबीआई जांच करावे के मांग कैल गेल बा। एने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ए घटना के काफी दुखद बतौले बाड़े। उ कहलन कि सरकार ए मामला के न्यायिक जांच के आदेश दे देले बा। जांच भइला के बाद अगर ई बात सामने आई कि पुलिस बिना कौनो वजह से एनकाउंटर कैले बिया तो सरकार सख्त कार्रवाई करी। बिहार पुलिस भोजपुर मुठभेड़ मामला में लापरवाही के बात स्वीकार कैले बिया। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत करत कहले कि यह मामला के निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीका से जांच खातिर शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी के जिम्मेदारी दिहल गई बा। उ कहले कि यह मामला में लापरवाही बरते वाला थाना प्रभारी समेत 5 गो पुलिसकर्मी लोगन के निलंबित कर दिहल गई बा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अध्यक्षता में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक भइल। बैठक में सब विभाग के अफसर लोगन के गाँव के विकास योजना में तेजी से पूरा करावे के निर्देश दिहल गईल। अलग अलग जिला के जिलाधिकारी लोग और बड़ अधिकारी लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ए बैठक में शामिल भइलन। राज्य के ज्यादातर हिस्सा में दक्षिण पश्चिम मानसून के रफ्तार सुस्त पड़ गईल बा। एह कारण अब तक सामान्य से 42% कम बारिश भइल बा। हालांकि उत्तर पूरब हिस्सा के जिलन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज कर गई बा। मौसम विभाग अपन अनुमान में कहले बा कि काल से पटना, गया और सारण समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम इलाका में भी मानसून के सक्रिय भइला से बारिश के संभावना बा। विभाग अगला 24 घंटा के दौरान अररिया, बांका, भागलपुर, बनज पहाड़, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिला में कुछ जगह पर तेज हवा के साथ भारी बारिश के आशंका जतैले बा। इस दौरान कुछ जगह पर आकाशीय बिजली भी गिर सकेला। इन्हें राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम इलाका में उमस वाली गर्मी के सिलसिला जारी बा। सुपौल जिला प्रशासन जदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड नंबर 10 में काल राती एगो श्राद्ध कार्यक्रम में भोजन खैला के बाद 100 से ज्यादा लोगन के तबीयत खराब होके के खबर के भ्रामक बतौले बा। जिला जनसंपर्क अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बतौलन कि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में मामूली रूप से बीमार 2 से 3 लोगन के ही लावल गईल रहे। एकरे साथ आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है, एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुने वाला सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा। श्रोता सभे, आजकल मौसम बड़ा तेजी से बदल रहल बा, करवट ले रहल बा। ऐसन में हमनी के आपन और अपना बाल बच्चन पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। अभी देखी सुबह कुछ और रहता, दोपहर में कुछ और हो जाता, और शाम के मौसम फिर कुछ और हो जाता। ऐसन में देखी हमनी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता। ऐसन में हमनी के खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ है।

माल मवेशी भी रख ले बनी जाए, तो इस सब पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। घर में बूढ़ बुजुर्ग बन उन लोग पर विशेष ध्यान रख के चले के चाहिए, काहे से कि हमनी के थोड़ा भी लापरवाही बहुत काफ़ी परेशानी बढ़ा सकत बा। ताहीं आज के हमने कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले जा। अभी हमने के वो चर्चा हुई जो उनके विषय रही विधवाओं के सम्मानी ढंग से जिए के अधिकार बा। फिर एगो लोकगीत के आनंद ले जाए। आज के कलाकार रह मनोरंजन ओझा बोल रही सुतला में रह नहीं सकी रहे। एकरा बाद एगो वार्ता सुनल जाए, विषय रही महिलाओं के घरेलू हिंसा से कानूनी संरक्षण का बा। वार्ताकार बनी आज के जनक राज किशोरी। फिर एगो जानकारी के तहत संयुक्त राष्ट्र से लोक सेवा दिवस के बारे में जानल जाए। एकरा बाद सहयोग शिविर से लाभ कैसे उठाओ जाओ एकरा बारे में भी जानकारी लिखल जाए। आ हमनी के कार्यक्रम के अंत में मौसम के पूर्वानुमान भी जानल जाए। तो श्रोता से इस तरह हमनी के कार्यक्रम के संक्षिप्त रूपरेखा आए। अब जानल जाओ विधवाओं के भी सम्मानित ढंग से जिए के अधिकार बा। हमनी के भारतीय कानून और संविधान में विधवा महिला लोगन के सम्मान से सुरक्षित और आत्मनिर्भर होके खातिर जिए के पूरा अधिकार बा। उनका के गौरवपूर्ण जीवन के सुनिश्चित करे खातिर कई संपत्ति संबंधी अधिकार, भरण पोषण के नियम और सरकारी पेंशन योजना मौजूद बा। विधवाओं के संपत्ति और भरण पोषण के अधिकार कानून ये सुनिश्चित करेला कि एगो विधवा महिला के अपना पति या ससुराल के संपत्ति खातिर दूसरा पर निर्भर ना रहे के पड़ेला। संपत्ति में अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार विधवा के आपन दिवंगत पति के संपत्ति में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी मानल जाला। बच्चा और माता पिता के साथ उनकर पति के संपत्ति पर भी बच्चा के समान ही बराबर अधिकार होला। ससुर के संपत्ति से भरण पोषण सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला के अनुसार एगो विधवा बहु के अपने दिवंगत ससुर के संपत्ति और आय पर पूरा हक होला। यदि उ अपना पति के मृत्यु के बाद अपन खर्चा उठाए में असमर्थ बाड़ी तो ससुर उनका के गुजारा भत्ता देवे से इनकार ना कर सकत बणम। दूसरा शादी करे पर भी अधिकार बा। यदि कोई विधवा महिला पुनर्विवाह करत बाड़ी तब भी पहला पति के संपत्ति पर उनकर कानूनी अधिकार समाप्त ना होला। बिहार के विधवाओं खातिर सरकारी सहायता और पेंशन बा, जैसे लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चल रहल बा। पेंशन राशि योजना के तहत पात्र विधवा महिला के प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान कइल जाला। पात्रता खातिर महिला बिहार के निवासी होके के चाही। उनकर आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होके के चाही। 60 वर्ष के बाद उ वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हो जाली। उ अन्य कोनो सरकारी पेंशन के लाभ न लेत होखस। आवेदन प्रक्रिया अपन नजदीकी ब्लॉक कार्यालय RTPS काउंटर पर बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकत बानी। महिला हेल्पलाइन घरेलू हिंसा मामला में हमनी के जिसे 1091 या 181 पर कॉल भी तुरंत करके सहायता ले सकत बानी। देखिए कल जौन बा 23 जून बा, 23/6/2026 के अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनावल जाला। तो ये दिवस के अवसर पर भी हमनी के विधवा के भी सम्मानी ढंग से जिए के अधिकार देवे के चाहिए। आई तब कुछ एगो लोकगीत के आनंद लिखल जाओ। आज के कलाकार बनी हमनी के मनोरंजन ओझा। आ बोल बाटे सुतला में रह नहीं सकी रहे।

देखी श्रोता सब कितना निमन गीत यहाँ के सुनौनी मनोरंजन ओझा जी, एक गीत खातिर यहाँ के हमनी के धन्यवाद दे दिया जाओ। श्रोता सब महिला लोगन खातिर हर तरह से हर कार्यक्रम चल रहा बा, योजना एक से एक चल रहा बा, ऐसन में सारे महिला लोगों के चाहिए कि हमनी के एकरा से लाभ लिहल जाओ। महिला के घरेलू हिंसा होके चाहे बाहरी कोनो होके ओकरा से कानूनी संरक्षण भी मिलल बा। एकरा विषय पर हमनी के वार्ता सुनल जाए। आज के वार्ताकार बानी जनक राजकिशोरी जी। तो महिला के घरेलू हिंसा के कानूनी संरक्षण का बा, कैसे बा, विस्तृत जानकारी लिहल जाओ जनक राजकिशोरी से। एकरा पहले आई कुछ संदेश सुन लिया जाओ।

0: खातिर लिही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: तो बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
2: यह विडंबना है कि हम एक तरफ तो नारी रूप की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं, हम माँ को इतना आदर देते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसे धरती माता कहते हैं, जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी माँ जिसने अपने कोख से 9 महीने तक अपने जिगर का खून पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया, सभ्यता और संस्कृति की बातें बताई, पढ़ा लिखा कर योग्य और काबिल बनाई, जिसके नाम की रोशनी से सारा विश्व जगमगा रहा है, लेकिन आज वही माँ एक भिखारिन की भांति दर दर की ठोकरें खा रही हैं। वही औरत जिसने आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता को जन्म दिया, आपको योद्धा बनाया, संघर्षों से लड़ना सिखाया, साहस दिया, उसी औरत पर आपका दुस्साहस बढ़ता नजर आता है, उसी औरत पर शस्त्र उठते आए दिन देखा जाता है, आए दिन परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित होते हैं, अव्वल नंबर पर महिला ही नजर आती है। घर में अगर बेटा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, न्यायिक पदाधिकारी बन गया, तो उसकी अहमियत, उसके लिए दहेज की रकम भी बढ़ा दी जाती है। दूसरी तरफ महिला कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, पुरुष वर्ग अपने पुरुष होने के दम भरना नहीं भूलते हैं, वहाँ भी उनका शोषण किया जाता है। आए दिन यह सुनने में आता है कि आप औरत हैं, क्या कर सकती हैं, ऐसा कार्य आपसे नहीं हो सकता है, ये कार्य आपके समर्थ से परे है, यह साहस भरा कार्य औरतों से नहीं हो सकता है। औरत की बुद्धि कितनी होती है, कितना भी पढ़ लिख लो तो हो औरत, वही तुलसीदास की ताड़न की अधिकारी इत्यादि बातें सभी समाज में, जहाँ यह कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो फिर उस गांव गंवी की हालत क्या होगी जहाँ कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ दहेज कम लाने का ताना, बेटा न जनने का ताना, कुरूप होने का ताना, मायके भेज देंगे का ताना, घर से निकाल देने का ताना आए दिन सुनना पड़ता है। बाल विवाह, अशिक्षा, शारीरिक और मानसिक क्लेश, दहेज का दंश सब नारी ही सहन करती है। इसलिए महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। सबसे पहले दहेज निवारण अधिनियम 1961 बनाया गया। चूँकि बेटा अगर शारीरिक रूप से अपूर्ण भी है तो उसे घी का लड्डू बताया जाता है। हिंदू समाज में तो पिंड यानी पूर्वजों के मरने के बाद मुखाग्नि और पिंड का अधिकार सिर्फ पुरुष को ही दिया जाता है, इसलिए भी उनकी अहमियत कुछ अधिक ही बढ़ जाती है। कुरूप और एक आँख वाले लड़के भी सुंदर और सर्वगुण संपन्न सुशील लड़की की शादी भी कई बार तभी होती है जब कुछ दहेज की रकम दे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, जो नौजवान दहेज की शर्त पर ही शादी करता है वह अपनी शिक्षा, अपने देश और नारी जाति का निरादर करता है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक बातों की अपेक्षा दहेज निवारण अधिनियम 1961 का समाज पर बहुत असर हुआ। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि विवाह के दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार दहेज लेता है या देता है तो उसे 5 साल की सजा और 15,000 रुपये या दहेज मूल्य के बराबर तक जुर्माना हो सकती है। इस अधिनियम के आने के बाद लोगों में कुछ चेतना आई, औरतों को कुछ साहस मिला, लेकिन महिला उत्पीड़न जारी रहा। अब भी लोगों की मानसिकता शांत नहीं हुई, नाते रिश्तेदार द्वारा दहेज कम लाने

काटने की बातें हो, या भोजन न मिलने की बातें हो, या बीमारी का इलाज न कराने की बातें हो। मायके में शादी के बाद बरसों तक बेटी अपने माँ बाप के घर पड़ी रहने की बातें हो, यह एक प्रचलन सा समाज के सामने उभर कर सामने आने लगा। इस संदर्भ में मुझे मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति याद आ रही है, आंचल में है दूध, आँखों में है पानी, हाय नारी तेरी यही कहानी। समय के अंतराल में एक घर की आवाज़, एक नारी की आवाज़ समाज और परिवार के नारियों की आवाज़ के रूप में परिवर्तन होकर बुलंद हुई और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे वह घर परिवार में सुरक्षित रह सके और अत्याचार करने वाले अत्याइयों को सजा मिल सके। इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 498A का प्रावधान किया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप में वर्णित है कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। क्रूरता से तात्पर्य यह है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए करे, या उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य को जो शारीरिक हो या मानसिक गंभीर क्षति या खतरा करने की संभावना हो, या किसी स्त्री को या इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को या किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। इस तरह नारियों को संरक्षण देने के लिए समय समय पर कानूनी पहल किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B जोड़कर बनाया गया, जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113B जोड़कर सशक्त बनाया गया। भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 304B में यह उल्लेखित है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जा सकती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या उसके नातेदार उसके मृत्यु के लिए कारित करने वाला समझा जाएगा। जो कोई इस तरह की मृत्यु कारित करेगा वह कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु वह आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। समय बीतने के साथ और महिलाओं को अधिक बेहतर संरक्षण देने के लिए एक और अधिनियम बनाया गया, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के नाम से जाना गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में भी संशोधन कर नारियों को संपत्ति में समान अधिकार देने की बात सामने आई है, जहां उसे लड़के के बराबर शेयर मिलने का प्रावधान है। कानून द्वारा इतना संरक्षण मिलने के बाद जरूरत इस बात की है कि जो भी संरक्षण कानून द्वारा प्राप्त है उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाए। अगर हमारा दायित्व परिवार और समाज में सेवा करना है तो एक पहलू सम्मान प्रतिष्ठा और सेवा लेना भी है। हम अपने अधिकार को जानें समझें और अपने मार्ग को खुद प्रशस्त करें और दुनिया को नई रोशनी दें, नई ताकत दें। सरोजिनी नायडू ने कहा था, जब भी अत्याचार होता है आत्मसम्मान इसी में है कि उठो और कहो कि यह अत्याचार आज में ही खत्म करना होगा, न्याय पाना मेरा हक है। जिस तरह सती प्रथा के रिवाज को हमने इतिहास के पन्नों में दफन किया है, उसी तरह अब वह समय आ गया है हम महिला उत्पीड़न, चाहे बाल विवाह हो, दहेज का रिवाज हो, भ्रूण हत्या, आर्थिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक शोषण हो, हम दफन कर दें। हम जानते हैं सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन 1000 मील का लंबा सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। हम महिलाओं की पुकार है, बदलाव लाने की कोशिश करें, बदलाव की मांग करें, खुद अपनी मानसिकता बदलें। अक्सर महिला द्वारा ही

0: उत्पीड़न की बातें सामने आती हैं। अंत में मैं सभी श्रोता बंधुओं से यह कहना चाहूँगी, जहाँ भी और जैसे भी हो सके अपनी आधी आबादी जहाँ बदलाव की ज़रूरत है जागृत इंसान बनाएंगे। औरतों का कद्र करना, शक्ति और आज़ादी भरा जीवन देने का हक न सिर्फ औरतों के लिए बल्कि एक सभ्य समाज की पुकार है। जिस तरह जुल्म और अत्याचार हमारे जीवन में जहर बनाकर लौटेगा, उसी तरह प्यार और हमदर्दी हमारे जीवन में खुशी और शांति का लहर बनकर लौटेगा। मैं महिला श्रोताओं से भी यह जरूर कहना चाहूँगी कि सरकार, समाज और कानून द्वारा प्राप्त संरक्षण का दुरुपयोग ना करें। आप प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, आप जगत जननी हैं और आपकी सूझबूझ शांति में ही समाज और परिवार का कल्याण है। एक बात और बताना चाहते हैं, जो भी घरेलू हिंसा से पीड़िता महिला हैं वो थाना जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर थाना प्रभारी आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो आप उच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक के पास इस बात का इन्फॉर्मेशन कर सकती हैं या न्यायालय में आकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास सीधे शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं के संरक्षण के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। जरूरत इस बात की है कि आप सरकार द्वारा और समाज द्वारा प्राप्त संरक्षण का सदुपयोग करें।
1: देखिए श्रोता सभे, महिलाओं को घरेलू हिंसा से कानूनी संरक्षण कैसे बा, एकरा बारे में बड़ा फरिया के जनक राज किशोरी जी बतैनी ही। यह जानकारी खातिर हमनी के यहाँ के धन्यवाद दे दिया जाओ आ इस जानकारी से महिला लोग के लाभ भी लेवे के चाहिए, ता यहाँ के धन्यवाद दिया जाओ। आगे हमनी के एगो जानकारी के तहत जानल जाओ, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस काल 23 जून बा, आ काल 23 जून के संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनावल जाला। दिवस जौन बा मेन एकर उद्देश्य का बा, एकरा बारे में जानल जाओ। समुदाय खातिर सार्वजनिक सेवा के महत्व और मूल्य के उजागर कैल जाए तथा विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के उत्कृष्ट योगदान के सराहना कैल जाला। दिन दुनिया भर के सरकार के अपन सार्वजनिक सेवा के आधुनिकरण और सुधार खातिर नवाचार के पहचाने और अपनावे खातिर प्रोत्साहित कैल जाला। 20 दिसंबर 2002 के संयुक्त राष्ट्र महासभा UN एगो संकल्प अपना के ए दिवस के घोषित कैलन, तब से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनावल जा रहा बा। आ हमनी के मनावे के भी चाहिए, एक एह दिन हमनी के एगो नया संकल्प लेवे के चाहिए। तो श्रोता सभे आई दूसरा बाटे हमनी के सहयोग शिविर से लाभ उठावल जाओ, एकरा बारे में जानल जाओ। देखी सहयोग शिविर हर स्तर पर, जैसे ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर लगेला आ एकरा से हमनी के लाभ बहुत ले सकत बानी। बिहार सरकार के सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल के माध्यम से हमनी के घर बैठल या अपन पंचायत में विभिन्न सरकारी योजना और समस्या के त्वरित समाधान प्राप्त कर सकत बानी। पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर से लाभ लेवे खातिर हमनी के जिला में या प्रखंड स्तर पर पंचायत स्तर सहयोग शिविर लगेला, जौना में हमनी के जाके या हमनी के ऑनलाइन भी कर सकत बनी जा। तो विभागीय सहायता, जैसे इस शिविर में लगभग 19 विभाग राजस्व, बिजली, राशन, पेंशन आ बहुत से काउंटर लगा रहेला, एकरा में हमनी के सहयोग शिविर में जाके अपन समस्या के समाधान करा सकत बनी जा। जैसे मान ली कोनो जनता दरबार बा, तो जनता दरबार में मान ली कोनो रुआ भूमि में त्रुटि हो गई बा, कोनो ऑनलाइन में रुआ सुधार करावे के बा, और आवेदन ऑनलाइन कैले बानी, कर्मचारी लगे दौड़त तनी नहीं हो पावत, तो वहीजा रुआ जाई आ जिला अधिकारी भी या ओकरा से उच्च अधिकारी भी जाई आ वो जनता दरबार में या सहयोग शिविर में रउआ यह बात के कहीं कि हम इतना दिन से खरीले बनी, हमार ई गलती बा, हमारा मुख्य कागज में ई बाटे, ओहिजे से राउर ई शिविर में ही फाइनल हो जाए आ राउर सुधार हो जाए, कहीं ज़्यादा दौड़े की जरूरत ना पड़ी। ऑनलाइन सहयोग पोर्टल के जरिए भी हमने के जैसे 30 दिन के में ही समाधान पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर लेला, शिकायत के 30 दिन के भीतर निवारण कर लेला, हमनी के लिखित जानकारी दे दिल जला आ सहयोग 30 दिन के अंदर

यदि नीखे हो तो अगला आगे रुआ जा सकत बनी ओ मने ओकरा के आगे भी हमनी के बढ़ा सकत बन जाए। हेल्पलाइन भी बा जैसे 1100 के उपयोग करी सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक, या एकरा के हमनी के जैसे हेल्पलाइन फोन करके हमनी के सहयोग कर सकत बनी या सहयोग ले सकत बनी या हेल्पलाइन पर हमनी के ये सहयोग शिविर से काफ़ी लाभ उठा सकत बन जा। श्रोता सभे बहुत तरह के समस्या का समाधान हमनी के ये सहयोग शिविर में हो सकत बा। तो आई अब हमनी के थोड़ा मौसम के मिजाज जानल जाओ। ओकरा पहले देखी मौसम के चेतावनी बा। भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 21-22 जून में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी आप 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चले के हल्का माध्यम बारिश होके के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के पूर्वानुमान बा। यह अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चल सकत बा। एक तरह से हमनी के जैसे चावल के धान के लंबी अवधि वाला किस्म के सबौर बा, श्री बा, श्रवणा बा, सब एक राज श्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, श्रवण BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी के नर्सरी स्थापित हमनी के कर सकत बन जा। स्वस्थ पौधा के खातिर नर्सरी में सरल गोबर के खाद के व्यवहार जरूर करे के चाहिए। नर्सरी में क्यारी के चौड़ाई हमनी के 1.25 मीटर से 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नर्सरी तैयार करी। बीज की व्यवस्था जनबा प्रमाणित स्रोत से ही ली आ बीज गिरावे से पहले बीजोपचार जरूर करे के चाहिए। एक तरह से पौधा तैयार यदि हो तो वो पौधा के हमनी के मुख्य खेत में लगा सकत बन जा। अब समय आ रहल बा, मानसून भी हमनी के साथ दे रहल बा। देखी कल के जौन बाटे वर्षा हमनी के 6 mm बा। अधिकतम तापमान जौन बा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के उम्मीद बा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 45% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20% रहे के उम्मीद बा। हवा के गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकत बा। यही के साथ हमनी के समय देखी श्रोता सभे एकदम उराग चलत चलत के बेरा से सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। तो आइए, कार्यक्रम के आरंभ में आपको हम सुनवा रहे हैं लाल फिल्म का एक गीत। आवाज़ है अंजलि की, गीत लिखा है शैलेश संगम ने और संगीत दिया है चंदन सिंह ने।

बिहारी बाबू। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत लिखा है बृजकिशोर दुबे ने और संगीत है चित्रगुप्त का।

श्रोताओं, सांझ गीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कुछ भोजपुरी फिल्मी गीत। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म दुल्हा गंगा पार के फिल्म का एक गीत। गीतकार और संगीत है लक्ष्मण साहब आदि का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म धरती मैया का गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, संगीत चित्रगुप्त का है और इसे लिखा है लक्ष्मण शाहबादी ने।

आप सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी धरती मैया। लक्ष्मण शाहबादी की रचना को संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। श्रोताओं, इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत संपन्न होता है। FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। बुनियाद हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है।

0: में पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी दूसरा कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं। हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए, नंबर है 9431899002, 9431899002। और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005, ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब। क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियाँ देंगे, आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
0: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
1: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं, कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहाँ कार्डियक सर्जरी हो रही है। तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी या रोजगार है, ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है, एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
1: जी, क्योंकि जैसे पहले ही बताया है कि बहुत

0: ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं, यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
0: सर, बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं जो रोजगार वाले, रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
1: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
0: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाए,
1: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से, सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800121001 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहाँ आएं, देखें, पढ़ें, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहाँ पढ़ाई होगी, और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर, शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप?
0: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है।

0: और फैकल्टी जो हमारे हैं अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
1: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हमारे युवा साथी उनके गार्जियन ज़रूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोज़गार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोज़गार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज़्यादा चिंतित होते हैं।
0: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और कई दफ़ा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज़। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
1: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में भी आपसे ही बात होगी क्योंकि सवाल आएंगे, मुझे पता है। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051। टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने को राजेश को मौका दिया, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोताओं नमस्कार, गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में मैं लाल बहादुर दुबे। तो आइए जान लेते हैं कुछ स्थानीय गतिविधियां। रोहतास जिले के नए जिलाधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र ने आज सोमवार को रोहतास समाहरणालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। नव पदस्थापित जिलाधिकारी को निवर्तमान जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने पदभार सौंपा। जिलाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने के उपरांत उपस्थित पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए जिले में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जिले के हर तबके तक पहुंचाने के लिए सभी को कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि रोहतास जिले की ऐतिहासिक धरती पर आकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिले के विकास के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को पूरी ईमानदारी एवं तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा ताकि यह जिला और तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। उन्होंने कहा कि जिले की विकास उनकी पहली प्राथमिकता है।

आज ही समाहरणालय रोहतास से स्थित डीआरडीए सभागार में जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं विभागों के अभियंता के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के लक्ष्य को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों में आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर शीघ्र समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि आम नागरिकों को अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सहयोग शिविरों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री स्तर से लगातार की जा रही है। वर्तमान में जिला अंतर्गत आयोजित सहयोग शिविरों में प्राप्त 6983 आवेदनों में से 6212 का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 508 आवेदन लंबित हैं। इस प्रगति को उन्होंने सराहनीय बताया। साथ ही उन्होंने भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों का हर हाल में शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि शिकायतकर्ताओं को सहयोग शिविर में ही उनके आवेदन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके। बैठक में जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों एवं अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में जितने सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पुल, उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य संपादित किया जाए। भूमि की समस्या से जिस भी प्रोजेक्ट में समस्या आ रही उसकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसे लेकर प्रोजेक्ट निगरानी ग्रुप बनाया जाएगा जिसके द्वारा इसकी सतत निगरानी की जाएगी। मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण मौजूद रहे। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक गीत। आवाज़ किशोर कुमार की है, रचना सावन कुमार की और उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में इसे हमने लिया है फिल्म सौतन से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। शाम के 7:25 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आकाशवाणी के पटना केंद्र से, जिसे हम अपने केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।
2: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
6: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
5: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
6: कहाँ से पता चलेगा?
5: से RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
6: आज ही सर्च करूंगा।
5: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हुए। लीजिए सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राज्य के लगभग 4 लाख किसानों के खाते में फसल क्षति अनुदान की राशि अंतरित की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, राज्य में सरकारी भूमि अभिलेखों से मिलान के बाद ही होगा दाखिल खारिज। बिहार पुलिस ने माना भोजपुर मुठभेड़ मामले में हुई लापरवाही, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। और राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में भी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 3,96,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि अंतरित की है। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत इस वर्ष रबी मौसम के दौरान मार्च महीने में आए आंधी तूफान, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल क्षति अनुदान के रूप में दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने बताया कि आगे और भी किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी।
1: लगभग 200 करोड़ रुपया की राशि किसानों को इनपुट के तौर पर, अनुदान के तौर पर दिया जा रहा है। ये लगभग 3,96,000 किसानों के द्वारा जो आवेदन दिए गए थे उनको सत्यापित करने के बाद ये एक बड़ी राशि उनको उपलब्ध कराई जा रही है। और भी जो आवेदन आएंगे उनको डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा तुरंत राशि उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार करेगी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों से इन योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 दिन पहले सभी के खाते में उनको किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ आज भी हम लोग इनपुट के तौर पर अनुदान जो देना है उसको भी

0: देने का काम करें। इसलिए दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार के किसान भाइयों को उनके जीवन में खुशहाली रहे, इसका लगातार प्रयास कर रहे हैं।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चंपारण क्षेत्र को देश के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए विशेष कार्य योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज पटना में गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य की 9 बंद चीनी मिलों के पुनर्जीवन और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना को गति देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने गन्ना उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत अधिक निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीए सरकार अति पिछड़ा समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अति पिछड़ा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचार उनके आदर्श हैं। श्री चौधरी ने स्वयं को 36% अति पिछड़ों का रक्षक बताते हुए भरोसा दिया कि राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दाखिल खारिज के प्रत्येक मामलों के निष्पादन से पहले उसका मिलान सरकारी भूमि अभिलेखों से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। श्री जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सरकारी भूमि पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम होने की संभावना को समाप्त करना और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिहार पुलिस ने भोजपुर मुठभेड़ मामले में लापरवाही की बात को स्वीकार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सुधांशु कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए शाहबाद प्रक्षेत्र की डीआईजी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
2: इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहां गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर जिले के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे रजिस्ट्रार के समक्ष मामले का उल्लेख करें, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। याचिका में मुठभेड़ की घटना की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भोजपुर के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में युवक की मौत की घटना को दुखद बताया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी, पुलिस दोषी पाई गई तो कार्रवाई होगी।
3: एक घटना काफी दुखद है और सरकार ने इसीलिए अभी न्यायिक जांच का आदेश दिया है। अगर जांच होने के बाद निश्चित तौर पर यदि पुलिस ने जब बिना वजह का जो इनकाउंटर किया है साबित हो जाने पर जाकर के सरकार कार्रवाई कराने का काम करेगी। अब जांच का इंतजार करना चाहिए, जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी, यदि पुलिस दोषी होगी पुलिस पर कार्रवाई होगी।
1: सुपौल जिला प्रशासन ने जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड संख्या 10 में कल रात एक श्राद्ध कार्यक्रम में भोजन खाने के बाद 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब होने की खबर को भ्रामक बताया है। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में मामूली रूप से बीमार 2-3 लोगों को ही लाया गया। चिकित्सकों ने उनकी जांच की, जांच में विषाक्त भोजन खाने या किसी अन्य असामान्य लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण विकास योजनाओं को तत्परता से पूरा करने के

0: निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न सेवाओं का शीघ्र लाभ उठाने में यह ऐप अत्यंत सहायक है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज विधानसभा विशेषाधिकार न्यायालय कक्ष का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा में जनप्रतिनिधियों तथा सदन की गरिमा और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। यह न्यायालय सदन के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। विधानसभा अध्यक्ष इस न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगी। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के जिलों में कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि कल से पटना, गया और सारण समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में मानसून के सक्रिय होने से बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
1: दिनांक 23 जून राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 घंटे के दौरान भागलपुर, मुंगेर और बक्सर जिले में अनेक स्थानों पर तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नेपाल में बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष पहली बार नदी का जलस्तर 1,00,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए देर रात बराज से 1,09,55 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इधर जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने आज कोसी बराज का निरीक्षण किया। उन्होंने बराज और तटबंधों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने हालात पर नजर रखने और सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सभी जिला प्रशासन को मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि बिना लाइसेंस जुलूस निकालने, डीजे और भड़काऊ गाना बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर विभिन्न जिलों में आदेश के अनुपालन के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि 26 और 27 जून को निकलने वाले मुहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इधर रोहतास के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी दीपक कुमार ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण मुहर्रम पहली प्राथमिकता है। किशनगंज के नए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता है। वहीं जहानाबाद की नवनियुक्त जिला पदाधिकारी छीरिंग वाई भूटिया ने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। अरवल जिले में

जून से 2 जुलाई तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बैठक कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। सुपौल जिले के संयुक्त श्रम भवन में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय पीएम अजय योजना के तहत कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया। विभिन्न कंपनियों ने 350 अभ्यर्थियों में से कई को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में आज से 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर्मियों को कृषि संबंधी सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, आंकड़ों के संग्रहण, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य विषयों की जानकारी दी।

0: प्रदान किए। पटना स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में आज से 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर्मियों को कृषि संबंधी सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, आंकड़ों के संग्रहण, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य विषयों की जानकारी दी जा रही है। सीतामढ़ी प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार योगेंद्र रीगावाल की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय रीगावाल ने लंबे समय तक आकाशवाणी के जिला संवाददाता के तौर पर भी कार्य किया था। लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रिमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राज्य के लगभग 4 लाख किसानों के खाते में फसल क्षति अनुदान की राशि अंतरित की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, राज्य में सरकारी भूमि अभिलेखों से मिलान के बाद ही होगा दाखिल खारिज। बिहार पुलिस ने माना भोजपुर मुठभेड़ मामले में हुई लापरवाही, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। और राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में भी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
1: सहरसा पुलिस केंद्र में समस्तीपुर जिला बल के 234 प्रशिक्षु सिपाहियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। कोशी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रशिक्षु सिपाहियों का अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को सम्मानित भी किया गया। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड की माखड़ पंचायत में मनरेगा से निर्मित जीविका ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में 200 से अधिक जीविका दीदियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि यह हाट जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन और स्वरोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पशु सखियों, CLF, एंकर पर्सन और LHS के लिए डेयरी और पशु प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण में वैज्ञानिक पशुपालन, पशु स्वास्थ्य और डेयरी प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। वहीं कृषि महाविद्यालय अगवानपुर में आत्मा और कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में किसानों को

0: रसायनमुक्त खेती, मिट्टी की उर्वरा शक्ति संरक्षण तथा आय बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। बीते दिनों बिहार गृह विभाग के प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईपीएस अधिकारी विक्रम सिहाग को सहरसा का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं निवर्तमान पुलिस अधीक्षक हिमांशु का तबादला शेखपुरा कर दिया गया। सहरसा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में खेल भवन सह व्यायामशाला में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों ने भाग लिया। इधर बीते दिनों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मियों ने बाल श्रम के खिलाफ शपथ ली तथा इसके उन्मूलन के लिए जन जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।
1: और अब प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
2: सुपौल जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों योजना एवं विकास विभाग के मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने छातापुर प्रखंड के रामपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले में प्राचीन हस्तलिखित और दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज और डिजिटलीकरण का कार्य जारी है। इसी क्रम में जिले के राघोपुर प्रखंड के त्रिलोक धाम गोसपुर गाँव में लगभग 600 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज हुई है। इनमें काव्य अलंकार ग्रंथ कुबल यानंद तथा हस्तलिखित भृगु संहिता शामिल है। विशेषज्ञों ने इसे मिथिलांचल की समृद्ध ज्ञान परंपरा से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सुपौल पुलिस केंद्र में मधुबनी जिला बल के 217 प्रशिक्षु सिपाहियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। कोशी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रशिक्षु सिपाहियों को कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय द्वारा विशेष चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में चालकों को यातायात नियमों, सड़क संकेतों और सुरक्षित वाहन संचालन की जानकारी दी गई। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। महात्मा गांधी चिल्ड्रेन पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सावन कुमार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं सुपौल उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ योगाभ्यास कर योग को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की।
1: अभी आप सुन रहे थे सहरसा और सुपौल जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही थी हमारी संवाददाता आरती कुमारी, जबकि सुपौल जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
3: आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आपके द्वारा फरमाइश किए गए ईमेल संदेश पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद।

आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। गीतों का सफ़र आज आप तय करेंगे लाल बहादुर दुबे के साथ। तो आइए सबसे पहले आप सबको सुनवाते हैं फिल्म रोटी का एक गीत, किशोर कुमार की आवाज़ है, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत के लिए ईमेल आप सबने भेजा है, आप हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी।

राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली, फलाना झा, और नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला, ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, आप सब ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये संदेश भेजा है। और बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, मोताला महाराष्ट्र से ये संदेश भेजने वाले हैं विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार और आरती सुरलकर। तो आइए आप सबकी मन आपकी पसंद पर फिल्म रोटी का यह गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ किशोर कुमार की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीर रांझा से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। कैफी आजमी के गीत को संगीत दिया है मदन मोहन ने। और इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं फुटानी चौक नरहन एस्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आप सब हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर। मलकापुर महाराष्ट्र से ये संदेश समय प्राप्त हुआ है सोपान तायड़े, नारायण इंगले, आशीष मुरहेरकर। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ही यह संदेश भेजने वाले हैं अभिजीत गौहाड़कर राही, श्रीमती सरिता गौहाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गौहाड़कर, अर्जुन गौहाड़कर उर्फ टुकटुक। और ये संदेश है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। और शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से आप सब हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो आइए आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा का खूबसूरत गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ थी फिल्म हीर रांझा के लिए। और अब जानते हैं अगली जो फिल्म के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसका नाम आपको बता दें। फिल्म है जीवन मृत्यु, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए संदेश भेजने वाले आप सब श्रोता हैं पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक बाड़मेर, राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से आप हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। ये जो संदेश हमें मिला हुआ है इसे भेजा गया है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी रानी, सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले और काप सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से। ये संदेश है बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतसा, आशु अहमद फूलवाले, लखमिनिया जिला बेगूसराय से आप सब हैं शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से आप सब ने भी संदेश भेजा है अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत प्रवीण। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। ये संदेश हमें मिला है

आकाशी सासाराम से आप सब हैं निसार, कमाल, मिराज, साकिबा, आलिया, और दतरेंगी से आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो आइए, आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं फिल्म जीवन मृत्यु का गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं ई मनपसंद कार्यक्रम। यदि आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो ईमेल संदेश के माध्यम से हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisasaram akashvanisasaram@gmail.com। और हाँ, ध्यान रखें, अपराह्न 1 बजे से संध्या 5 बजे के बीच भेजे गए ईमेल संदेश को ही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और श्रोताओं, एक और अनुरोध आप सबसे होगा कि आप अपने पसंद के जो गीत भेजते हैं उसमें कम से कम 2 या 3 फिल्मों के नाम अवश्य लिखें, कारण कि यदि वह फिल्म उपलब्ध नहीं होती है तो हम वह गाना आपको नहीं सुना पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम 2 या 3 फिल्मों के नाम आप अवश्य लिखें, जिससे हम यथासंभव आपकी पसंद को पूरा कर सकें। और जहाँ तक हो सकता है, इसमें फरमाइश आप सबकी बहुत ज़्यादा आती है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपका अधिक से अधिक संदेश शामिल हो सके। हाँ, कभी हो सकता है कि आज आपका जो संदेश अगर शामिल नहीं हुआ तो अगले दिन अवश्य होगा, इंतज़ार करते रहिए। तो आइए अब आगे आपको सुनवाते हैं फिल्म गोपी किशन का एक गीत, कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ है। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का। इस गीत के लिए देख लेते हैं संदेश भेजने वाले आप श्रोताओं के नाम। आप हैं ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है नजमुल होदा और SM जावेद का, नजमुल होदा SM जावेद और शगुप्ता अंजुम का। आप सबने गुमला झारखंड से ये संदेश भेजा है। और संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आप हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, उस्मान अली अंसारी, आमना खातून अंसारी, सनूबर परवीन अंसारी, आसिफ अली अंसारी, शुमैला परवीन अंसारी और रियाज का। सऊदी अरबिया से आप सब हैं अशरफ अली अंसारी, सारिक अली अंसारी। तो आइए आप सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं फिल्म गोपी किशन का एक गीत कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ है।

पसंद के गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। काला पत्थर फिल्म से हमने इस गीत को लिया है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत राजेश रोशन का। इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप सब श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। पटेल नगर मलोट से आप समय डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से यह संदेश हमें मिला हुआ है। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत आप सबका। और करण वीर हाउस भूचो कैंचियाँ बठिंडा पंजाब से आप हैं। प्रेमजीत सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करण वीर, करण दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत का। तो आइए आप सब की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं फिल्म काला पत्थर का यह खूबसूरत गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं।

श्रोताओं, ई मन पसंद कार्यक्रम का अगला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं। आप हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, श्रीमती सुषमा सिंह, जेके मिश्रा, श्वेता रानी पाठक, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, काश्वी, गिल्लू, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। और ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार से, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चौधरी कुमारी, नंदनी कुमारी का। और ये संदेश है चौसा गोला बक्सर से, जयराम बिंद, सीता मुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार का। गढ़मुक्तेश्वर से, गढ़मुक्तेश्वर काकाठेर की मड़ैया से राजकुमार, जानकी देवी, पुनीत कुमार, सपना कुमारी और भावना कुमारी ने भी ये संदेश भेजा है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। ये संदेश है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण का। और पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, उस्मान अली अंसारी, मोतीलाल, आप सब ने ये संदेश भेजा है गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। तो आइए आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं फिल्म दो बदन का एक गीत। आवाज़ आशा भोसले की है, शकील बदायूनी के गीत को संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है गंगा जमुना, शकील बदायूनी की रचना है और संगीत है नौशाद का। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले आप सब श्रोता हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से यह संदेश भेजने वाले हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से आप सब हैं हाजी इशहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं गंगा जमुना फिल्म का यह खूबसूरत गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं बेटी बेटे फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप सभी श्रोता हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राज किशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान, ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोती माला जी, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह, बक्सर बिहार से आप सब हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ये संदेश है रामे ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार का। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकर्ण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर का। और ये अंतिम संदेश हम ले रहे हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म बेटी बेटे का यह खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आपके द्वारा फरमाइश किए गए ईमेल संदेश पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद संपन्न होता है। गीतों का सफर आज आपने तय किया लाल बहादुर दुबे के साथ। कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दें, कल पुनः आप सब हमारे साथ होंगे इसी कार्यक्रम में और समय भी यही होगा। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता से थे संतोष कुमार। FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। शाम के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, जिसे हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है।

0: सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था, करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने

0: आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103

0: दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94.68 रुपये पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन रहे हैं। रात्रि के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। तो आइए, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शीतला माँ के गीत। गायक कलाकार हैं भरत सिंह भारती।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ भोजपुरी लोकगीत। आइए, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं मंदाकिनी सिंह की आवाज़ में एक झूमर।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसी के साथ लोकधारा कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं वंदगी के अंतर्गत कुछ मनकबत। आइए सुनवाते हैं वलियों का करम एल्बम में सोनू अली खान और विधि शर्मा को।

कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं एस राजा और चेतना की आवाज़ों में यह मनकबत। एल्बम है वलियों का करम।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम बंदगी संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार, जिसका अनुप्रसारण हमारे केंद्र से किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह है विविध भारती।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

अभिनेता अमरीश पुरी पर।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहां से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

0: इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।
1: ना

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना। मस्ताना अलैना।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर यह नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना, अल्लेना, सिर्फ एक तू है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

आज के फनकार आकाशवाणी केंद्र का, आकाशवाणी सासाराम केंद्र का प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी हमें सुन रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। आइए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आयुष्मान चौधरी और राजमणि की आवाज़ों में एक गीत, एल्बम है बदनाम हुए।

कार्यक्रम का अगला एल्बम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, साधना सरगम और आजम अली मुकर्रम की आवाज़ों में। एल्बम है क्या खूब बनाया है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रसरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाज़ों में यह गीत, जिसे हमने लिया है एल्बम चुरा लिया से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। आइए अब सुनवाते हैं आपको एल्बम मोरे सैया गए परदेश में, आवाज़ है अरविंद सिंह की।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं जिए तो जिए कैसे 2.0 एल्बम में स्टेबिन बेन की गाए यह एल्बम गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत। फिल्म है इंतकाम, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, चित्रपट तराने कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गीत जो कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। तो आइए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार चित्रगुप्त।

आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार एच डी बर्मन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सारंगा फिल्म से। गीतकार भरत व्यास और संगीतकार सरदार मलिक।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुना रहे हैं भीगी पलकें फिल्म का गीत। एमजी हसमत की रचना है और जुगल किशोर तथा तिलक राज का संगीत निर्देशन।

श्रोताओ, हिंदी फिल्म संगीत चित्रपट तराने के अंतर्गत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर तथा मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्मी गीत। इसी गीत के साथ हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने संपन्न होता है। प्रस्तुति थी संतोष कुमार की। आइए अब जानते हैं आकाशवाणी सासाराम से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तथा मौसम के बारे में। कल प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आप सुबह 7:30 पर सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। देशभक्ति संगीत का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर और पसंद आप

हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका प्रसारित होगा प्रातः 9:10 पर, और पूर्वाह्न 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी आप सुन सकते हैं पूर्वाह्न 10:30 पर। रसधार भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा 10:45 पर, और 11:00 आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम

कल हमारी संध्याकालीन सभा की शुरुआत होगी 4:30 से, जिसमें सुनेंगे आप उद्घोषणा एवं कार्यक्रम विवरण, और उसके बाद आप सुनेंगे 4:35 से लोक माधुरी के अंतर्गत कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुन सकते हैं 5:05 से। युवाणी युवा साथियों का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत 6:00 प्रसारित होगा। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण होगा 6:10 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 6:40 पर आप सुनेंगे सांझ गीत के अंतर्गत कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत, और गुड इवनिंग रोहतास सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 पर। ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:50 पर। 9:00 रात्रि में आप सुनेंगे लोक धारा के अंतर्गत कुछ भोजपुरी लोकगीत महफिल। इस कार्यक्रम में आप कुछ गज़ल सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। और हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 10:00। और चित्रपट तराने आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। यह था कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार और तत्पश्चात अंग्रेजी समाचार। इसे हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी